FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 29वीं तिथि आज रविवार है। तदनुसार 20 सितंबर 2026 इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौती

0: व्यक्तियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 491.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए चिंतन। चिंतन का विषय है रोशनी।

भाव एक ही है। अंधेरों को हराने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है। रोशनी को हम जीवन का पर्याय भी कह सकते हैं। जब सब तरफ गहन अंधकार हो, तब हमें रोशनी की एक छोटी सी किरण आगे का रास्ता दिखाती है। जैसे सूर्यास्त के बाद पृथ्वी अंधकार में लीन हो जाती है, तब हजारों सितारे मिलकर भी धरती के अंधेरे को दूर नहीं कर पाते, लेकिन एक छोटा सा दिया अपनी बाती की लौ जलाकर हमारे आसपास उजियारा फैला देता है और हम अपने आसपास की चीजों को सुगमता से देख पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घना अंधेरा होता है, तब हमारी आंखें होते हुए भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन माचिस की तीली की लौ या फिर लाइटर से उत्पन्न प्रकाश में हम अपनी जरूरत की चीजों को आसानी से देख लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें देखने के लिए प्रकाश या रोशनी की आवश्यकता होती है। बाहरी अंधेरे को दूर करने के लिए हम कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर के अंधेरों को हराने के लिए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, जो एक योग्य गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए। जब हमारे मन में ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है, तो हमारा मन रोशन होने लगता है, और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो हमें ये संसार नए स्वरूप में नजर आता है। वास्तविक रूप से हम अपनी आंखों पर अज्ञान का पर्दा डालकर अपना जीवन ढो रहे हैं, और इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य मैं मेरा भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता के साथ जी रहा है। इस प्रकार की छोटी मानसिकता के साथ जीवन जीने से हम स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भूल करते हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह के जाल में मनुष्य उलझता है, तब जीवन दुखी हो जाता है और हम जीवन के रास्तों से भटककर एक गहरे अंधकार में चले जाते हैं। जिंदगी को सुचारू चलाने और इंसानियत के रास्तों पर चलने के लिए हमें अपने मैं से बाहर निकलना होगा। जिस प्रकार काली अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है और

0: होता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने मन के भीतर के तम को हराने के लिए अपने मन में एक नई रोशनी कायम करनी होगी। यही ज्ञान ज्योति हमें सत्य की राह पर ले चलेगी।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे चिंतन, जिसका विषय था रोशनी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले भक्ति रचना सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे
1: आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।
2: सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:40 होने को है। प्रस्तुत है आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय।

7:20 पर समय रहेगा कार्यक्रम वातायन का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गीत गायन जिसका शीर्षक है मैं हूं बूढ़ा शजर, तारेश दवे की आवाज में। आपके पसंदीदा कार्यक्रम खुश दिल से का समय रहेगा प्रातः 8:15 पर। राजस्थानी लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे 8:45 पर। प्रातः 8:00 आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। वहीं आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रातः 9:00 जयपुर केंद्र से। प्रातः 9:10 पर और प्रातः 11:00 आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 10 बजे। सायंकालीन सभा में समाचारों का प्रसारण समय कुछ यू रहेगा। 6:28 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से, समाचार संध्या 8:45 पर दिल्ली केंद्र से, वहीं आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से।

शाम 5:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम बच्चों के मुख से। रात 9 बजे हम आप सुन सकेंगे जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हेडलाइट्स हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: विशिष्ट ध्यान रखीने कार्य करवू है। बीजू आ समय में अगर मौसम थोड़ो अगर कोरो हो तो खरपतवार उखाड़वा काम भी कर लेव है। अपने खेतर में अपनी फसल हाथे हाथे खरपतवार भी थती जा समय समय पर उखाड़ती पड़ी थती जा हाथे जे अपने खेतर में अपने फसल में उर्वरक मिलो खाद मिलो इन पोषण खरपतवार प्राप्त करते करे ले ने अपने फसल कमजोर रही जा खरपतवार बड़ी थी जा तो समय समय पर उखाड़वा काम करव है। बीजो अपने घर ने आसपास बागवानी वगैरह भी करो तो बागवानी में भी विशेष ध्यान रखू है कि भी अगर जाड़ी हो खरपतवार वगैरह उगी आए तो इन्हें भी ध्यान रखू है। हाथ घर ने आसपास खुली जगह पर भी करो तो ए भी अगर कोई बड़ी बड़ी घास थी जा तो इन्हें भी जहरीले जानवर वगैरह आई नाम पाई सके तो इन्हें भी समय समय पर सफाई करते रहू है। अपने घर ने आसपास भी देखू है की कई प्रकार न जहरीले जानवर वगैरह छुपानी जगह नहीं हो। बीजो बरसात समय में जगह जगह ऊपर अपने बरसाती पानी इकट्ठो थी रहे एम थी मच्छर वगैरह भी पनपी जाए तो इन भी समय समय पर साफ सफाई करती रहू है। घर ने आसपास कई नाली वगैरह हो जिनमें पानी इकट्ठो थी रहू है सफाई कर काढ़ नाखू है या फिर इनमें मच्छर ना लार्वा मर जाए दवाई ना छिड़काव करव है। हाथे अपने घर में आसपास कई भी खाली बर्तन पड़े जिन बरसाती पानी इकट्ठो थे तो इन्हें भी ध्यान रखो कि वो बर्तन वगैरह नहीं पड़ेला रहे जिन्हें बरसात के पानी इकट्ठे थी रहे खड्डा वगैरह हो तो इन्हें भी भर देवा है। इन चीजों ने ध्यान रखू है ताकि अपने दुर्घटना थी बची ले रहो। घर में बाहर अपने जूते वगैरह मिलो तो इनमें भी घना बदम ताकि जानवर वगैरह मैं आवीने कोई रही सके ने अपने बना दी के पैर लंगा तो अपने काटी भी सके तो ध्यान रखू है कि जूते वगैरह अपने पैर बारते तो इन्हें अच्छी तरह थी कि कंकीरी साफ सफाई करें पसे पैर वो है। तो आ कुछ चीजें जो बरसात के मौसम में अपने ध्यान रखनी जरूरी है। इन अलावा अपने बिजली ना उपकरण है इन्हें भी अड़वा में अपने विशेष सतर्कता बरती है। अगर बरसात के मौसम में अपने थोड़ी सावधानिक कार्य करेंगा तो अपने दुर्घटना थी बचले रही सको। सौरा पर अपने बरसात मौसम में हूँ सावधानी रखो इन बारे में बात करी बात ऐसी कर रही थी पर सौरा समय है पूरा थी गये तो अस्तरिता बेन ने आज्ञा लो। राम राम राम राम।
1: श्रोताओं भी आपने सुना कार्यक्रम खेती नी बात FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत मिश्रित स्वर में।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत जो अभी ही संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वातायन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गीत गायन, जिसका शीर्षक है मैं हूं बूढ़ा शजर, तारेश दवे की आवाज में।
2: सबसे पहले मैं आज आपके लिए गीत लेके आया हूं, जिसकी भूमिका कुछ ऐसी है कि एक बूढ़ा पेड़ है जो अपना दर्द सुना रहा है। आप इसे बूढ़ा पेड़ कहें या एक उम्रदराज व्यक्ति की भावनाएं एक स्वयं को लेकर जो है, मैं एक गीत में ढालने की कोशिश की है। आप सुने कि मैं हूं बूढ़ा शजर, आज तुमको मेरे दिल की बातें बता दूं अगर तुम कहो कि मैं हूं बूढ़ा शजर। शजर का मतलब पेड़ से है कि मैं हूं बूढ़ा शजर, आज तुमको मेरे दिल की बातें बता दूं अगर तुम कहो। पास बैठो जरा तुम घड़ी दो घड़ी, दर्द अपना सुना दूं अगर तुम कहो। आगे बंध की पंक्तियां देखें कि मैंने दुनिया में रखते ही पहला कदम इन हवाओं में घुलते जहर को पिया, चिलचिलाती हुई धूप खुद ओढ़ कर मैंने छावों भरा तुमको आंगन दिया। और क्या क्या किया है तुम्हारे लिए, और क्या क्या किया है तुम्हारे लिए, याद तुमको दिला दूं अगर तुम कहो। मैं हूं बूढ़ा शजर, आज तुमको मेरे दिल की बातें बता दूं अगर तुम कहो। अगला बंद देखें कि तुमने पत्थर उछाले थे मेरी तरफ, मैंने बदले में मीठे समर ही दिए। समर का मतलब फल से है।

झूले सजा, अपनी शाखों पे सावन के झूले सजा, आज तुमको झुला दूं अगर तुम कहो मैं हूं बूढ़ा शजर। अंतिम बंद इस गीत का निवेदित करता हूं, सुने कि मैं जताना नहीं चाहता हूं मगर मैंने उपकार तुम पर हजारों किए। जब एक पेड़ असहाय हो जाता है, अपनी व्यथा सुनाकर थक जाता है, उसके बाद में भी हम इंसान नहीं समझते, आए दिन पेड़ काट रहे हैं, वन समाप्त कर रहे हैं, तो चेतावनी भरे शब्दों में पेड़ क्या कहता है सुने कि मैं जताना नहीं चाहता हूं मगर मैंने उपकार तुम पर हजारों किए। मेरी खातिर मैं कुछ भी नहीं मांगता, रख लो जिंदा मुझे तुम तुम्हारे लिए, कि प्राण वायु को बस कुछ घड़ी रोक कर, प्राण

वायु को बस कुछ घड़ी रोक कर मेरी ताकत दिखा दूं, अगर तुम कहो मैं हूं बूढ़ा शजर, आज तुमको मेरे दिल की बातें बता दूं, अगर तुम कहो पास बैठो जरा, तुम घड़ी दो घड़ी दर्द अपना सुना दूं, अगर तुम कहो मैं हूं बूढ़ा शजर। इस गीत के बाद मैं अपनी चार चार पंक्तियां जैसे मुक्तक कहते हैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, सुने। कि एक अच्छा भला मकान जुटा रखा है, सब कुछ होते हुए भी इंसान किस तरह से परेशान है, क्यों परेशान है, चार पंक्तियों में बांधता हूं। एक अच्छा भला मकान जुटा रखा है, जिंदगी भर का खान पान जुटा रखा है, तो फिर क्यों चेहरे से नदारद है खुशी जीने की, कि फिर क्यों चेहरे से नदारद है खुशी जीने की, जबकि जीने का हर सामान जुटा रखा है। एक अच्छा भला मकान जुटा रखा है। अगला मुक्तक देखें। कि अक्ल इंसान की जिस रोज बड़ी होती है, मौत बस चार कदम दूर खड़ी होती है। अक्ल इंसान की जिस रोज बड़ी होती है, मौत बस चार कदम दूर खड़ी होती है। कि वक्त होता है

कमाने की पड़ी होती है, अक्ल इंसान की जिस रोज बड़ी होती है, मौत बस चार कदम दूर खड़ी होती है। छोटे छोटे भावों को लेकर ये मेरी चार चार पंक्तियां हैं। अगली चार पंक्तियां मैं सुनाता हूं कि पाप के सब घड़े एक बार में ही भर देगा। जब पाप हद से गुजर जाएंगे तो ऊपर वाला क्या कदम उठाएगा, क्या करेगा, सुने कि पाप के सब घड़े एक बार में ही भर देगा, एक इशारे पे महज रोक हर सफर देगा। कि पाप के सब घड़े एक बार में ही भर देगा, एक इशारे पे महज रोक हर सफर देगा। कि जिसने बस एक ही चुटकी में बना दी दुनिया, कि जिसने बस एक ही चुटकी में बना दी दुनिया, वो इसे खत्म भी बस एक में ही कर देगा। पाप के सब घड़े एक बार में ही भर देगा। चार पंक्तियां आगे और सुने कि नफरतों के लिए फुर्सत निकाल लेते हो, किस तरह पीढ़ियों के बैर पाल लेते हो। कि नफरतों के लिए फुर्सत निकाल लेते हो, किस तरह पीढ़ियों के बैर पाल लेते हो। कि मुझसे एक गेंद तक नहीं उछल रही और तुम, कि मुझसे एक गेंद तक नहीं उछल रही और तुम, पांव की नोक पे रिश्ते उछाल लेते हो, किस तरह पीढ़ियों के बैर पाल लेते हो। चार पंक्तियां रिश्ते को लेकर प्रस्तुत करता हूं कि सिर्फ सम्मान ही सम्मान नजर आता है, सो तपस्याओं का वरदान नजर आता है। सिर्फ सम्मान ही सम्मान नजर आता है, सो तपस्याओं का वरदान नजर आता है। कि तुम

मुझको उस रिश्ते में भगवान नजर आता है, सिर्फ सम्मान ही सम्मान नजर आता है। चार पंक्तियां और देखें कि दोस्त दुश्मन को बनाने के गीत लिखे हैं, अश्क आंखों में छुपाने के गीत लिखे हैं, दोस्त दुश्मन को बनाने के गीत लिखे।

0: लिखे हैं, अश्क आंखों में छुपाने के गीत लिखे हैं, कि तुम न आए तो मौत को भी कई सालों तक, कि तुम न आए तो मौत को भी कई सालों तक, मैंने बातों में लगाने के गीत लिखे हैं दोस्त, दुश्मन को बनाने के गीत लिखे हैं, अश्क आंखों में छुपाने के गीत लिखे हैं। अपने इस क्रम को चार और पंक्तियों से आगे बढ़ाता हूं कि हो के आसान से आसान मिल सको तो मिलो, कि बन के खोई हुई पहचान मिल सको तो मिलो, हो के आसान से आसान मिल सको तो मिलो, बन के खोई हुई पहचान मिल सको तो मिलो, कि मुझसे हर कोई समस्या की तरह मिलता है, कि मुझसे हर कोई समस्या की तरह मिलता है, तुम अगर बन के समाधान मिल सको तो मिलो, तुम अगर बन के समाधान मिल सको तो मिलो। बहुत बहुत धन्यवाद
1: श्रोताओं, भी आपने सुना कार्यक्रम वातायन जो अभी संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा

0: कसम।
1: आपकी कसम फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की ये रचना आपने सुनी राहुल देव वर्मन की तर्ज थी। अब लीजिए सुनिए दोस्त फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में। इसे आनंद बख्शी ने लिखा है।
2: कैसे जीते हैं भला

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे,
0: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45

हम शकल फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, आरटी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम हेराही प्यार की कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर होंगे।

आइए फिर स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में। अभी आप ये गीत जो सुन रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलशन बाबरा का।

0: हाथ की सफाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
4: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
3: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
4: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
3: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
4: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध

कसौटी फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुनिए कागज की नाव फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और मनहर की आवाजें, नक्श लायलपुरी की रचना, सपन जगमोहन की धुन।

कागज की नाव फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले और मनहर की थी, रचना नक्श लायलपुरी की थी, संगीतकार थे सपन जगमोहानी सी। गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
3: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में

0: 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
1: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
2: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
1: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
3: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
1: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
5: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने

0: कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
1: We have to continuously be watchful of the
2: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे

0: में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाये रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
1: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमरीकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनुभाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितम्बर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमरीका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमरीका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना

0: तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो कुछ दिल से। मैं हूं आपकी दोस्त और इस खूबसूरत सफर की और इस खूबसूरत सुबह की मेरे कारवां अस्मा खान, सिर्फ और सिर्फ एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल के साथ। सुबह की इस ताजा हवा में जब सूरज की पहली किरण जमीन को छूती है तो दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, पाकीजगी और नजाकत। आज का हमारा उनवान यानी टॉपिक है स्वच्छता, जिसे अगर हम थोड़ा अदबी रंग दें तो हम कहेंगे पाकीजगी और सफाई।

0: टिकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
2: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे

0: एटीएम कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई,
2: आरबीआई कहता है बीएसबीडी अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
3: दोस्तों कहते हैं कि सफाई हमारे घर तक महदूद नहीं होती, ये तो हमारी रूह और हमारे मुआशरे यानी सोसाइटी का आईना है। जैसे रूह की पाकीजगी दिल को सुकून देती है, वैसे ही आसपास की सफाई जिंदगी को सेहत और खूबसूरती बख्शती है।

दोस्तों कहते हैं कि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत है, लेकिन ये तंदुरुस्ती तब तक नामुकम्मल है जब तक हमारा तन और मन दोनों साफ सुथरे ना हो। तन की पाकीजगी तो सबको नजर आती है, लुत्फ तो तब है जब मन का गुबार साफ हो। इसी ख्याल के साथ सुनते हैं एक बेहद सुरीला और रूह को सुकून देने वाला गीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: आरबीआई कहता है
7: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
8: खैर मकदम दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छतन यानी जिस्मानी सफाई की। जाहिरी सफाई हमारी सेहत की पहली सीढ़ी है, हमारी बुनियाद है। जब तक हम अपने शरीर, अपने कपड़ों और अपने आसपास के माहौल को साफ रखते हैं तो हम तमाम तरह के अमराज यानी बीमारियों से महफूज रहते हैं।

0: दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि आधा ईमान तो सफाई में ही बसता है। आज के इस दौर में जहां प्रदूषण और तरह तरह के वायरस हमें घेरे हुए हैं, वहां अपने हाथों को बार बार धोना, दांतों की सफाई और साफ सुथरे लिबास पहनना बेहद लाजमी हो गया है।
1: हसीना से यूं मुलाकात हो गई।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

दोस्तों, जब आपका तन स्वच्छ होता है तो आपके अंदर एक अजीब सा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास पैदा होता है। लेकिन क्या सिर्फ तन की सफाई ही मुकम्मल सफाई है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस गीत के बाद।

दोस्तों, गीत से पहले मैंने एक सवाल किया था जिसका जवाब है कि अगर हमारा लिबास कीमती और उजला हो, हमारा जिस्म महक रहा हो, लेकिन हमारे दिल में नफरत, जलन, तकलीफे, गम और द्वेष छुपा हो, तो वो सफाई बेमानी है, अधूरी है। स्वच्छ मन का मतलब है एक ऐसा जहन यानी दिमाग जो मनफी यानी नकारात्मक ख्याल से आजाद हो। स्वच्छ मन तब होता है जब हम दूसरों की खताओं को दरगुजर करना सीख जाते हैं।

जी हाँ, दिल तो नहीं भरा लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है अलविदा कहने का। इसी के साथ दीजिए इजाजत आपकी दोस्त, आपकी हमनवा अस्मा खान को, फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक के लिए अलविदा। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल इस समय प्रातः के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत, रमजान खान व साथियों की आवाज में।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
6: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग, और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए।

0: टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत जो अभी संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
2: मुख्य समाचार। नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। फैटी लिवर स्क्रीनिंग में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। इस साल अब तक 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। RPSC की ओर से सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 आज दोबारा आयोजित की जा रही है और सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण है जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। कल इस अभियान के नए चरण को राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू किया गया था। राजस्थान ने फैटी लिवर की स्क्रीनिंग में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साल 2025-26 में 2,61,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस साल अब तक करीब 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि प्रदेश में फैटी लिवर की स्क्रीनिंग को व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। NCD व्यवस्था के तहत फैटी लिवर की व्यवस्थित स्क्रीनिंग को शामिल किया गया है। मिशन लिवर स्माइल के तहत बीमारी की समय पर पहचान, आवश्यक जांच और उपचार के लिए रेफरल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 63 जिला अस्पतालों में मिशन लिवर स्माइल के तहत क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मोटापा कम करने के लिए मिशन OV लॉस चलाया जा रहा है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के तहत 305 नगर निकायों में कल अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। वोटों की गिनती के बाद कल ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका में कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में महापौर पद के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। जयपुर से भाजपा ने सुनील कोठारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने सुनीता मावर को इस पद के लिए चुना है। उधर जोधपुर में भाजपा ने प्रसन्नलाल मेहता और कांग्रेस ने 4 पार्षदों के नामांकन भरवाए हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि जिस प्रत्याशी के नाम पर सहमति बनेगी उसे सभी पार्षद का समर्थन देंगे। वहीं कोटा में कांग्रेस की सुनीता सुमन और भाजपा से अनुसुईया गोस्वामी ने नामांकन भरा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश की सामाजिक यात्रा का एक ऐसा पड़ाव है जिससे सोच बदली है और देश के भविष्य को नई दिशा मिली है। आइए जानते हैं बेटियों के प्रति सम्मान, समानता और विश्वास को मजबूत करने वाले इस सामूहिक संकल्प अभियान के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करीब 11 साल पहले हुई थी। पिछले एक दशक में इसने लक्षित सरकारी योजना से आगे बढ़कर देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लिया है। यह अभियान महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय,

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जिसे घटते बाल लिंगानुपात और लैंगिक भेदभाव की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस अभियान से लिंगानुपात में सुधार हुआ है, बाल विवाह पर अंकुश लगा है और शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। ये योजना बालिका के जन्म से लेकर शिक्षा और सशक्तिकरण तक उसके समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर देती है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 दोबारा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा दो पारियों में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। 11 जिलों में 666 परीक्षा केंद्रों पर 218,131 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। निष्पक्ष परीक्षा करवाने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी 11 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। प्रदेश में भादवा माह में विभिन्न स्थानों पर लोक देवताओं के मेलों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा में चल रहे मेले में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में बाबा रामदेव के जयकारे और लोक गीतों की धुनें गूंज रही हैं। वहीं कल तेजा दशमी पर लोक देवता तेजा जी की पूजा अर्चना की जाएगी। सवाई माधोपुर में आज से ही मेलों का आयोजन शुरू हो गया है। कल भजन संध्या और भंडारे होंगे। उधर बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि बायतू कस्बे में खेमा बाबा का मेला परवान पर है। लोक गीतों और लोक नृत्यों की थाप के साथ श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी हुई है।
2: मेले में बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से यात्रियों की आवक बनी हुई है। खेमा बाबा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। स्थानीय कलाकार भजनों की प्रस्तुतियां दे रही हैं। मेले में भोपाल नृत्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बीच पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सिद्ध श्री खेमा बाबा लोक आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: सेमीकंडक्टर से जुड़ा पांचवां सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन का विषय था सिलिकॉन टू सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। 3 दिन के इस सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। इनमें लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 52 देशों के प्रतिनिधि और 150 से अधिक वक्ता शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान 56 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, आधुनिक पैकेजिंग उपकरण और सामग्री, पावर इलेक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक मेधा से जुड़ी घोषणाएं भी हुई। उधर एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में बात करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो एक चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले से ही प्रमाणीकरण करा चुके हैं उन्हें दोबारा ये कराने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। जापान में 20वें एशियाई देश खेल में आज भारत की टेक बॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना सकामोतो से भिड़ेंगी। भारतीय निशानेबाज एलावेनिल क्लार्विन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा दोनों श्रेणी के मुकाबले में उतरेंगी।

और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। फैटी लिवर स्क्रीनिंग में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। इस साल अब तक 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। आरपीएससी की ओर से सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा।

0: अंडर भर्ती परीक्षा।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अदनान सामी के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अभी यही संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। महेश भट्ट एक नामचीन निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म क्राफ्ट के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। महेश भट्ट ने कथा, पटकथा लिखी, संवाद लिखे और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई।

0: महेश भट्ट 1949 में मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही पले बढ़े। यहीं उन्होंने पढ़ाई की। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट का शुमार फिल्म जगत के नामचीन फिल्मकारों में होता है।
1: इस बात का एहसास हो गया था कि पिताजी का

वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है। तो एक जिम्मेदार बेटे होने के नाते मैंने काम काज करने की कोशिश की, कहीं पर एक जिद थी अपनी एक पहचान क्रिएट करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी मेरे लिए वो था कि पैसा कमाऊं किसी तरह। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना ब्राइट था नहीं, तो काम वहां मिला नहीं ज्यादा, तो क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था तो फिल्म लाइन में नौकरी मिल गई, और वहां पर बड़ी मेहनत से काम की किया, शिद्दत से बहुत अपने आप को पेश किया हर डिपार्टमेंट में। वहां पर मेरे भाग्य ठीक थे, जानी बख्शी साहब ने मुझे एक दिन आके कहा, मैं दो चोर एक फिल्म थी उसके सेट पर क्लैप दे रहा था, तो उसने कहा कि ये सीन खत्म हो जाए तो बाहर आके जरा मिलने मुझसे। तो मैं बाहर गया तो वहां एक व्यक्ति थे, श्री कुलदीप तलवार साहब उनका नाम था, उन्हें कहा ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया मेरा इससे क्या लेना देना। तो जॉनी साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिल्म डायरेक्ट कर लोगे? तो मैंने बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में फिल्म डायरेक्ट, और मुझे लकीली ब्रेक मिल गया। फिल्म नहीं बनी, उसका नाम था मुक्ति, उसके दो दिन की शूटिंग हुई थी, विनोद खन्ना साहब थे उसमें और श्री शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, मगर फिल्म दो दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई, धक्के खाए यहां वहां, और लकीली एक हमको एक बिल्डर मिल गए, मिस्टर आर एच जैन उनका नाम था, और उन्होंने जॉनी साहब को कुछ पैसे वैसे दिए फिल्म बनाने के लिए, मंजिलें और भी शुरू हुई, फ्लॉप हो गई, विश्वासघात बनाई फ्लॉप हो गई, नया दौर एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे वो भी फ्लॉप हो गई। लहू के दौरान मैं बहुत काम किया, वो फिल्म के गाने वाले अच्छे थे, बहुत बड़ी मेकिंग थी उसकी, विनोद खन्ना साहब की एक स्टारडम में एक डे बाय डे राइज आ रहा था, मगर वो फिल्म भी नहीं चली, और लगा कि भैया कि अब हमारा जो है रिटर्न बैक टू पवेलियन है, पैकअप है। उम्र थी मेरी 28-29-30 साल के आसपास ही, 8 years वेस्टेड। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजरा था रजनीश, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ में, वो सारे अनुभव कहीं पर मैंने उसको निचोड़ कर एक फिल्म बनाई अर्थ,

एक नई शुरुआत हुई अर्थ से। अर्थ जब कामयाब हुई तो यह आदमी जिसकी ऑबिचुरी लिख दी गई थी उसका एक पूर्ण जन्म हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री।

0: मेरी नजर।
1: अर्थ जैसी गंभीर फिल्म से बतौर फिल्मकार महेश भट्ट ने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के एक खास वर्ग से शाबाशी पाई और ये साबित किया कि महेश भट्ट कलात्मक सिनेमा की भी गहरी समझ रखते हैं। ये विश्वास और पुख्ता हुआ उनकी एक और मर्मस्पर्शी फिल्म से। ये थी सारांश।

एक शेर है कि फैज साहब का मेरे ख्याल में है कि एक कड़ा दर्द जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीखियों से उतरता ही नहीं, वो लगता है कि एक सैमुअल बेकेट साहब थे, वो कहते थे कि इवन बिफोर द इंक हैज ड्राइड ऑन द पेपर आई एम फिल्ड विद दिस फीलिंग ऑफ रिवल्शन, कि स्याही के सूखने से पहले एक फीलिंग आती है लेखक में कि जो मैं कहने निकला था कहीं मैं वो कह नहीं पाया हूं। तो वो तकलीफ, वो सारी जो एक जो एक इम्पल्स जो आपको मजबूर करता है एक लेख लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, वो आपसे वो काम तो करवा लेता है मगर वो जो सेंसेशन, वो इम्पल्स जो है जिसको लोगों ने अक्सर कहा कि एक कैथारसिस होती है, वो पूरी तरह कहीं पर फिल्म मेकर या राइटर शायद महसूस कर ही नहीं पाता। हाँ, ये लगता है कि कहीं पर आप अपनी केओस को, आप सारे कंफ्यूजन को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लें तो लगता है कहीं पर जिंदगी पर एक कंट्रोल सा आपको आ गया, वो एक इल्यूजन होता है। और एक तरकीब है जो मैंने 25 साल में बड़े मुश्किल से हासिल की है कि आप किसी भी तकलीफ वाले दौर से गुजरिए उसको आप अगर किससे कहानी में बांध लें तो कहीं पर वो उसको आप झेल सकते हैं आसानी से। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड्स यू विथ सोलेस, शायद किससे और कहानी कहने की ये परंपरा इसलिए चलती रहेगी, और क्योंकि आदमी पीड़ा से बचने के लिए अपनी तकलीफों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है।

0: हमारी संवेदना को गहरे तक छूने वाली अर्थ सारांश और काश जैसी फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने व्यावसायिक समझौतों के तहत वो फिल्में भी बनाई जो लोकप्रिय सिनेमा के लटके झटकों से भरी होती हैं।
1: देखिए, जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एक फिल्म मेकर या एक लेखक या एक आर्टिस्ट उन सारे सीजन से गुजरता है। कभी वो लगता है कि जैसे एक रेगिस्तान सा अंदर है जिसमें से कुछ निकलता ही नहीं, और इस रेगिस्तान से गुजरते वक्त फिल्म मेकर को बड़ी तकलीफ होती है, राइटर को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर अचानक वो फेज खत्म होता है और लगता है कि जैसे हरियाली फिर से वापस आ रही है। तो ये हालांकि ये फेज मेरी जिंदगी में ज्यादा लंबा नहीं था। 94 में मैंने लास्ट फिल्म बनाई थी, सर और हमेरा ही प्यार के, जो कामयाब फिल्में थी। मगर ये जो पिछले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हूं, किसी फिल्म ने अपार्ट फ्रॉम तमन्ना जिसने एक नेशनल अवार्ड जीता था कुछ अपना असर छोड़ा नहीं, और इसलिए जब जख्म कहीं पर वापस उसने मेरे अंदर कहीं पर दबे कदमों आना शुरू किया जख्म की कहानी ने और मैंने उसको फिल्माया, तो कहीं लगा कि हाँ अपना कंट्रोल अब तक कायम है, कहीं पर वो फीलिंग्स वो इमोशंस जिसके लिए मैं इसके कारण मेरी एक पहचान बनी थी वो अब भी मेरे अंदर जिंदा है, और कहीं पर लोगों ने दोबारा दाद दी। मगर ये कहना कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सेसिव वर्क के साथ हुआ या एक इनडिफरेंट फेस था, एक इरेस्पॉन्सिबल फेस था, उसको सिंप्लीफाई करना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उस कंफ्यूजन का एक हिस्सा रहा हूं। तो ये तो कोई बाहर वाला ही देख के बता सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ।

0: फिल्म जख्म महेश भट्ट की प्रिय फिल्मों में से है। अपनी इसी फिल्म के बारे में बोलते हुए महेश भट्ट,
1: इसमें मेरी जिंदगी की गूंज है, जो झेला है, जो जिया है, कुछ जग बीती कुछ आप बीती का एक मिश्रण है। ऑफ कोर्स ड्रामेटाइज्ड फॉर्मेट में, हिंदी सिनेमा के ईडियम में।

अनुभव मैंने पेश किए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा इस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का ही एक हिस्सा समझता रहा हूं, मानता रहा हूं, और ये मेरी जबान है, मैंने अपनी बात अपनी जबान में कही है। और ये फिल्म बनाते वक्त मुझे बड़ा सुकून मिला, कहीं लगा कि एक तार जो छूट गया था हाथ से, जैसे वो हाथ में आ गया। और इसको जब हमारे स्क्रीन के अवार्ड फंक्शन पे 5 अवार्ड मिले, तो लगा कि कहीं पर इस फिल्म का मेरी फिल्म इंडस्ट्री के भाई लोगों ने भी सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेकिंग ऑफ।

महेश भट्ट ने कई फिल्मों की कथा लिखी तो कई फिल्मों की पटकथा। इनके नाम हैं सारांश, जन्म, काश, हक, तमन्ना, जख्म, संघर्ष, कसूर, ये जिंदगी का सफर, राज, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, इंतहा, पाप, रोग, कलयुग, हॉलिडे और गैंगस्टर।

महेश भट्ट द्वारा निर्देशित एक यादगार फिल्म है सर। फिल्म सर अपनी कथावस्तु और कलाकारों के अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए तो जाने जाते ही हैं, अपनी जीवन शैली, अपने दार्शनिक अंदाज और अपनी टिप्पणियों के लिए भी। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन अपनी बातें बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कह देना उनकी आदत है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर, हालात पर भी उनकी नजर रहती है। वक्त पड़ने पर वो खरा खरा कहने से पीछे नहीं हटते। महेश भट्ट प्रगतिशील सोच के फिल्मकार हैं, हालांकि ओशो और यूजी कृष्णमूर्ति के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। महेश भट्ट ने टेलीविजन के लिए एंकरिंग भी की और इस माध्यम के लिए फिल्में भी बनाई। टीवी के लिए बनाई गई उनकी ऐसी दो फिल्में हैं डैडी और फिर तेरी कहानी याद आई।

0: 2012 में महेश भट्ट की फिल्म आई राज 3।
1: लेखन, निर्माण और निर्देशन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।
0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने, विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया विजय दीपक छब्बर ने।
2: आज के फनकार।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइलेंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया और रखा पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
3: आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्हें आप उनके बचपन से सुनते आए हैं और आज भी जब आप उनके गाये गीत सुनते हैं तो आपके और हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बॉम्बे टॉकीज में हमारी मेहमान है मधुर और दमदार आवाज की धनी गायिका पूर्णिमा। जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा श्रेष्ठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
3: जी, हर आकाशवाणी से पूर्णिमा के गाये गीत न जाने कितने बजते रहे और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
4: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया
3: जी,
4: जो प्यार जो मान मुझे आप लोगों ने दिया
3: जी,
4: बहुत कम मिलता है आजकल, तो मिलता ही नहीं
3: जी।
4: पर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे
3: जी।
4: तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्य हो गई आज।
3: ये आपका बड़प्पन है,
4: मतलब अगर मैं नहीं आती ना तो मुझे दुख होता। मतलब मुझे शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता
3: जी
4: कि मेरे ना आने से मैं क्या क्या खो रही हूँ
3: जी। जी,
4: तो मैं आई इसके लिए मैं खुद की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
3: तो पूर्णिमा जी, आज का जो ये सफर है जो आपके साथ हम तय करने वाले हैं, ये सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का सफर है
4: जी। जी,
3: वहाँ तक हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्यारी सी नन्ही सी गायिका किस तरह से एक बड़ी गायिका में तब्दील हो गई और वहाँ पर भी वो हमेशा टॉप पे रही और अपने गानों से हम लोगों को हमेशा बांधे रखा। तो पूर्णिमा जी, आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के साथ काम करते थे।
4: जी जी, एक्चुअली हुआ यूं कि डैडी का जो परिवार था नेपाल से, वो लोग कोलकाता चले गए।
3: अच्छा।
4: और कोलकाता में जाकर बस गए। तो डैडी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ।
3: अच्छा।
4: और पढ़ाई लिखाई संगीत की तालीम सब कुछ डैडी ने वहीं से हासिल की, कोलकाता से
3: जी।
4: फिर मुझे लगता है अगर मुझे ठीक से याद है तो लेट 40s में डैडी मुंबई आ गए। आए किसके साथ? मन्नादा के साथ, मन्नादा जी के साथ।
3: अच्छा।
4: आए मन्नाडे जी के
3: जी,
4: साथ
3: जी।
4: और उनके चाचा हुआ करते थे केसी डे जी। उन दोनों के साथ डैडी मुंबई आए। फिर मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ, तो डैडी ने पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे बुलो सिरानी जी,
3: जी
4: उनको असिस्ट किया।
3: उनके गाने हम यहाँ के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में
4: है
3: जाते हैं।
4: हाँ।
3: जी।
4: तो उसके बाद उनको असिस्ट करते करते फिर डैडी ने रंजीत स्टूडियो ज्वाइन किया, तो वहां पे डैडी फिर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करने लगे।
3: अरे क्या बात।
4: मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि फिल्म महल के गाने जब बन रहे थे तो खेमचंद जी तब तक काफी बीमार हो चुके थे, काफी बीमार रहते थे। तो वो गाना खास तौर पर आएगा आने वाला, उसको कंपोज करने में डैडी का बहुत सहयोग रहा है।
3: अच्छा।
4: बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डैडी की रही है।
3: जी जी।
4: बस फिर डैडी ने बहुत अपनी खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह, लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की, सिर्फ आज मुझे इस बात का यकीन होते जा रहा है कि सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता
3: जी।

0: जी,
1: किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है और सही वक्त, और सही वक्त पे सही लोग मिलना। वक्त तो बादशाह है, पर उस सही वक्त के साथ सही लोगों का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता है डैडी कहीं वहां पीछे रह गए। बस यही कहानी मेरे डैडी भोलानाथ श्रेष्ठ की है।
0: जी जी जी, जी।
1: तो असफल रहे, बदकिस्मत रहे, सही वक्त पे नहीं आए, जो भी आप कहें, लेकिन प्रतिभाशाली बहुत थे
0: जी,
1: बहुत ज्यादा टैलेंटेड, इसके बारे में कोई शक नहीं। वो सिर्फ एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं तो बहुत ही बेहतरीन तबला वादक भी थे।
0: अच्छा,
1: बहुत बेहतरीन। फिर उन्होंने कुछ साल किशोर काका, किशोर कुमार जी के साथ भी काम किया। उनके फिल्मों में भी उन्होंने उनको असिस्ट किया। बल्कि आज अगर मुझे, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, माफ करें अगर मैं कहूं कि किशोर अंकल के फिल्मों के गानों को कंपोज करने में काफी कुछ सहयोग, नहीं बोलूंगी मैं, कंट्रीब्यूशन डैडी का रहा है।
0: जी जी जी, आप ही ने उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने कितना काम किया है।
1: जी,
0: और जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत के रसिक हैं, वो जानते हैं आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक कितने महान संगीतकार रहे होंगे।
1: बिल्कुल, मुझे आज भी मंदाकिनी जी कितने लोग डैडी के गाने भेजते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि एक शख्स है यहाँ मुंबई में, मरीन ड्राइव में रहते हैं, बहुत संगीत प्रेमी हैं, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी के बहुत सारे गानों के, बहुत नहीं, सारे गानों के कलेक्शंस हैं।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है मिलने के लिए, जाऊंगी मैं। तो इससे इससे मालूम होता है कि बदकिस्मत ही सही, नहीं वो मतलब नाकामयाब ही सही, असफल ही सही, पर कहीं एक मुख्तसर सा सेक्शन है
0: जी,
1: जो आज भी उनको और उनके गीतों को जानता है और पसंद करता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी उन्हें लोग याद
1: जी,
0: करते
1: जी,
0: हैं किसी न किसी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी
1: जी।
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, इससे भी पहले?
1: जी जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला
0: जी,
1: विरासत में ही संगीत मिल गया तो, और मेरे मायके की तरफ की मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है
0: जी,
1: आई कहती थी मैं माँ को
0: जी,
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, भूलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े संगीतकार
1: है ना, संगीतकारों
0: का
1: और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ, है ना। तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी
0: जी,
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी
1: कि मुझे बेटी हो और वो आशा
0: जैसी हो। अरे क्या बात है,
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत
0: नजर से प्रभावित भी रही है।
1: बिल्कुल एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी।
0: नहीं, होता है कलाकार के साथ, जब हम अपना किसी को आइडियल मानते
1: जी,
0: हैं तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं तो वो डबल हो गया ना।
0: हाँ, आप ही का गाया हुआ सुनते
1: जी, जी बिल्कुल
0: पसंद का गीत सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी, आई ने बताया सब कुछ. एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, सावरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे.
1: बहुत सुंदर.
0: तो आई, मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी.
1: अच्छा.
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो, इतना एंजॉय करती थी. उन्होंने, वो हमेशा कहती थी, भैया इसे ना आप डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी. और मंदाकिनी जी, मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी
1: जी.
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी
1: जी.
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और, मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है, कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगता था. तो बस, तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, एक ही थी एंटरटेनर,
1: जी,
0: गुड्डी
1: जी.
0: तो पहले तो ये कि डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी.
1: अच्छा.
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ,
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी,
0: और सारा म्यूजिक अपने में जुबानी मुझे याद रहता था. तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन.

0: तो उसका बिगनिंग म्यूजिक टररा पररा पररा पररा पररा पररा पप पप वो सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा,
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे
1: जी,
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है
1: जी,
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ। थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। तो मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967
1: जी।
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगी। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं कर 1967
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी,
0: पर तुम गाना गाओ।
1: अरे वाह,
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए। और मैं भी मान गई, उस वक्त ना बच्चे मान लिया करते थे।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते
1: जी,
0: थे।
1: और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो सकता है, तो कुदरत ने शायद हो सकता है कि दिमाग की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल,
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहां गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल, तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने। पहला गाना मैंने जब गाया वो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो।
1: अरे वाह, अरे वाह,
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा,
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा
1: जी,
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं एक और एक और। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने पात, तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना है
1: जी, बिल्कुल सही कह रही है
0: ना, वो उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देता
0: है और ढलने की एक अकल भी देता है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: जी जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई, जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस, चार लाइंस, छोड़े ही ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार, और भी परफॉर्मेंसेस हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से मैं 7 साल की थी तब
1: जी,
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी, जी।
0: कि डांस तो रहने ही दो तुम,
1: बिल्कुल
0: तुम गाना ही गाओ,
1: आप लोगों को नचाएंगी, ये था खुद नहीं नाचेंगी लेकिन दुनिया को नचाएंगी, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: भगदड़ बम्बई सो
1: दिल्ली नंबर पूरे सो
0: में लगा धागा
2: चोर निकल के था
0: चिड़िया घर में रानी बोले
1: जाए, जाए, जाए।

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहां मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक हरिनिवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहां समझिए नेक्स्ट रूम उनका, तो वो भी जानते थे बचपन से, उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने, और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना किस्मत सही वक्त
0: जी,
1: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जयकिशन जी नहीं,
0: अच्छा
1: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था, तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
0: अच्छा
1: छोटा

0: वो बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे। तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे। सिटिंग मतलब रिहर्सल्स, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे। तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था। तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी
1: को, मोर ले, है ना जी जी,
0: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई। तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर। उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा। अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ। सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
1: अच्छा,
0: बतौर स्क्रिप्ट राइटर्स,
1: जी जी बिल्कुल,
0: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स, और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
1: और सुपर डुपर हिट,
0: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे। तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को
1: जी।
0: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती है। अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती है, है ना,
1: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने।
0: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो। अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे, सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
1: जी,
0: टॉप फ्लोर पे। तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका, और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे, शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे, और सबास्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए
1: जी।
0: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा, गाती हो तुम, सीखती हो? तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत। तो बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा, तो क्या क्या गाती हो? मैंने सारे गम, अच्छा अच्छा किस सुर से गाती हो? मैंने कहा काली एक। अच्छा, तो जरा सुनाओ सारे गम सुनाओ। तो उन्होंने सारे गम पंचम तक लेके गए। बोले बस, बोले भोसले किसको लेके आए तुम? अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
1: अरे
0: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए
1: जी,
0: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
1: अरे वाह।
0: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969
1: जी जी,
0: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई, मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डे का, वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी।
1: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया,
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है, ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी, वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
1: जी,
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो? मैंने बोला हाँ, गाने में हंसोगी, मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी वो।
0: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी? तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं।

0: बोले बस इसको पकड़ के रखना
1: बस अंदर।
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। हाँ, और सुमन जी आए, सब आए थे
1: जी,
0: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, तो इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन म्यूजिशियंस, सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था। और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन, फर्स्ट टेक ओके
1: जी जी,
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया,
1: बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना बंदा के नीचे एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया
1: जी।
0: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया।
1: बिल्कुल,
0: ये गा के मैं डांस करती थी और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि
1: जी।
0: तो घर में आते थे और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते
1: जी।
0: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए।
1: अच्छा।
0: तो उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदाकिनी जी, तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उसको, तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए, नजराना। ये एक हमारे गाने बजाने में एक ये एक तहजीब होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको
0: तो एक नजराना देते
1: प्यार
0: हैं
1: का प्रतीक,
0: बिल्कुल, और उनको एक प्रोत्साहन देने
1: जी,
0: के लिए
1: जी।
0: तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह।
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना, तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है। तो यानी आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ,
0: ये आज महसूस होता,
1: शंकर जी के साथ हुई और इतनी बड़ी फिल्म में आपने गाया। तो वो गीत की 2 लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पता है मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक 10 है ना बुलबुल तारारा, है ना बोलो बोलो तर पापा पापा बोलो बोलो

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमी, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी,
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते हैं, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा। क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
0: जी।
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा मतलब एसडी बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी।
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था
1: बिल्कुल, उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामंत जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही एक वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता को यूं ही, तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा हो, एक अनोखा वो मंदा के नीचे क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते, वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ।

0: बहुत ही सुंदर संदेश देती है। इस कहानी और कविता सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बच्चों, इस बातचीत के बाद आइए सुनते हैं एक गीत।

0: बच्चों आज मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया, इन सभी का उपयोग बच्चों से लेकर बड़े तक सभी कर रहे हैं। जहां एक तरफ इन सभी से हमें बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे कि पढ़ाई, जानकारी, मनोरंजन और भी बहुत कुछ, वहीं दूसरी तरफ इनका इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी रखने की भी जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही या जानकारी के अभाव में हमें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए डिजिटल सुरक्षा आज के समय की एक बहुत बड़ी जरूरत है। बच्चों हमें अपना नाम, पता, फोन नंबर, स्कूल का नाम, पासवर्ड या फोटो जैसी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जितना भी जानने की कोशिश करे। इंटरनेट पर कोई अनजान व्यक्ति हमसे दोस्ती करने की कोशिश करे या कोई ऐसी बात कहे जिसे हमें डर या असहज महसूस हो, तो हमें उससे बातचीत आगे नहीं बढ़ानी चाहिए और तुरंत अपने माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताना चाहिए। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन मिलने वाली हर जानकारी सही हो, इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने, कोई ऐप डाउनलोड करने या ऑनलाइन कुछ खरीदने से पहले बड़ों से सलाह जरूर लें और उनके मार्गदर्शन में ही ये काम करें। इस तरह बच्चों डिजिटल दुनिया में समझदारी और सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। ज्ञान की दुनिया बहुत निराली पर सावधानी सबसे प्यारी। सुरक्षित रहें, समझदार बने, डिजिटल दुनिया में होशियार बने। इसी संदेश के साथ बच्चों समय है एक ब्रेक का। आगे की बातचीत करने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
2: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
2: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
2: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई,
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
5: आपकी चाय, EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
6: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
5: कैसे?
6: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
5: इतना इजी?
6: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है,
5: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
6: ना भाई ना।
7: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें, RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: पानी है जीवन का आधार, स्वस्थ रहे हम बारंबार, साफ पानी हम रोज पिए, स्वस्थ और खुशहाल रहे। बच्चों हम अक्सर सुनते हैं जल ही जीवन है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पौष्टिक भोजन, कसरत करना और साथ ही पूरी नींद लेना। बच्चों जब हम सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं।

0: या कोई भी शारीरिक काम करते हैं तो हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में शरीर से पसीने के रूप में पानी बाहर निकलता है। ऐसे में शरीर में नमी बनाए रखने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी हमारे शरीर के तापमान को सामान्य रखने में मदद करता है। पानी एक तरफ जहां हमारे द्वारा खाए गए पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने में मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों यानी कि बेकार पदार्थों या टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसलिए दिन भर में प्यास लगने पर या इसके अलावा भी बार बार पानी पीते रहना चाहिए। पानी की शरीर में कमी होने पर मुंह सूखना, थकान, चक्कर, सिर दर्द, उल्टी जैसा होना, जी घबराना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में पानी के साथ साथ अन्य तरल पेय भी डॉक्टर की सलाह अनुसार पीते रहने चाहिए, जिससे कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति होती रही। बच्चों, पानी पीने में आलस करना या लापरवाही करना ठीक नहीं है। साथ ही साफ और सुरक्षित पानी पीने के बारे में भी ध्यान रखें, क्योंकि दूषित पानी पीने से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आपका पानी रखने का बर्तन और पानी पीने का पात्र भी साफ हो, इस बात का भी ध्यान रखें। तो बच्चों, साफ पानी हम रोज पियेंगे, स्वस्थ रहने की आदत अपनाएंगे। और आइए बच्चों, फिर से सुनते हैं संदेश और साथ ही सुनेंगे एक गीत।
1: टीकू जी, 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: अरे भाई,
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: आपकी चाय, EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है, इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
5: ना भाई ना।
4: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आए बैठे साथ में बच्चों की हर बात सुनी, बातों से खिलता बचपन, मुस्कानों से घर सजता है। उनके सपनों को समझे, हर बात को सुनने की शुरुआत करें, डांट नहीं संवाद रखे, अपनापन हर पल साथ रहे। आज समय देकर बच्चों को रिश्तों में मिठास भरे। बच्चों से की गई बात उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर उनमें सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना भर देती है। बड़े जब बच्चों से खुलकर बात करते हैं तो बच्चों के मन की जिज्ञासाएं शांत होती हैं, उनके मन में बैठा कोई डर दूर होता है। बच्चों को ये एहसास होता है कि उनका कोई अपना ऐसा है जो उन्हें सुनता है, समझता है और हर समय हर परिस्थिति में उनके साथ रहता है। इसलिए बच्चों से अधिक बात कीजिए, रोज बात कीजिए, दिल से बात कीजिए, क्योंकि आज की सुनी हुई एक छोटी सी बात कल एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व की नींव बन सकती है। तो बच्चों, आज के कार्यक्रम में हमने सीखी कुछ बहुत जरूरी और प्यारी बातें। इन छोटी छोटी बातों को अपनी प्रतिदिन की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। इसी प्यारे संदेश के साथ कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति दीजिए आपकी दीदी सीमा जैन को। फिर मिलेंगे एक नई सीख, नई मुस्कान और नई बात के साथ। जय हिंद।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बच्चों के मुख से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। आइए सुनते हैं विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ। इसे गाया है उदित नारायण ने, इसे लिखा जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं।

0: आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने। अगला गाना कुमार सानू की आवाज में है, फिल्म का नाम है संघर्ष।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार

0: को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोध संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबाइनिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देशभर में 1100 यूक्रेन के ड्रोन मार गिराया है। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मैच में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले सुनिए ये संदेश।
2: एक विलक्षण गायक
3: अरे ओरे हे
2: संगीत के साधक
3: ओ, ओ, ओ।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45

छल और कपट की तुम हो पुड़िया, कौन खोलेगा नाम न जानू छल।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्हा भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:28 को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी और फिर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पर दादी आपके नाम?
1: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं मर हूँ तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
1: आरबीआई कहता है
3: जानदार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करने के लिए समन्वित रूप से ठोस कदम उठाना जरूरी। प्रदेश के 305 नगरीय निकायों में कल अध्यक्ष का चुनाव होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में 25 सितंबर को महापौर चुने जाएंगे। लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज के मेलों को लेकर दशमी तिथि पर धार्मिक उल्लास, मंदिरों में आज जागरण। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, शूटिंग में 2 रजत पदक हासिल हुए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के समय में आई कई प्राकृतिक आपदाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु के असर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रही थीं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहा है कि जलवायु से जुड़ा जोखिम बहुत गंभीर हो गया है। उन्होंने इस समस्या को रोकने और इससे निपटने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी संबंधित पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है।

0: उनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: गौरतलब है कि सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की ओर से रखा गया था। दो दिवसीय इस सम्मेलन में अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्यप्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। प्रदेश के 305 नगरीय निकायों में कल अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका के कुछ वार्डों में पुनर्मतदान के चलते वहां 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। कल उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगमों में महापौर पद के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि भीलवाड़ा और भरतपुर में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इन दोनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी महापौर चुने गए हैं। कल के चुनाव में परंपरागत रूप से मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के बीच ही माना जा रहा है, हालांकि कई जगह निर्दलियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। उदयपुर नगर निगम में भाजपा का महापौर बनना तय है, वहां पार्टी ने पारस सिंघवी को प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरह अलवर में भी भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है और यहां निर्दलियों के सहयोग से पार्टी का बोर्ड बनता दिख रहा है। पाली और अजमेर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी पार्षदों के समर्थन के लिए उसे निर्दलियों का सहयोग लेना होगा। बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहां पार्टी के अनिल कल्ला का मेयर बनना संभव है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देशभर में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंजाब के फाजिलका जिले से किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अभियान देश की भावी पीढ़ी को नशे की लत से बचाने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए हैं जो समाज सुधार से जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र को विकसित भारत बनाना है।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ मां के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: इस बीच देशव्यापी अभियान के तहत आज नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। कई जगह युवाओं को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रमों में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर इन दिनों भारत और जापान की सेनाओं के बीच वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 संचालित किया जा रहा है। वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय अभ्यास में उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायुसेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। अभ्यास में भारतीय वायुसेना, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस SU-30 MKI और राफेल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। वहीं जापान की वायुसेना AF-2A लड़ाकू विमान के साथ हिस्सा ले रही है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एयरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। भाद्र माह की दशमी तिथि पर कल लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज के मंदिरों और धूनों पर धार्मिक उल्लास का माहौल रहेगा। जैसलमेर स्थित रामदेवरा में चल रहा सालाना मेला परवान पर है। कल अंतिम दिन महाआरती के साथ मेले का समापन होगा। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि 9 दिवसीय मेले में राजस्थान और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के जय

0: भंडारे के साथ शामिल हो रहे हैं।
1: रामदेरा में चल रहे लोक देवता बाबा रामदेव के मेले में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगी पताका और घोड़े लेकर देश के विभिन्न कोनों से आए भक्त उत्साह एवं उमंग के साथ बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु अपने साथ बड़ी बड़ी ध्वजाएं और घोड़े लेकर बाबा के जयकारे लगाते हुए रामदेरा पहुंच रहे हैं। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के चाक चौबल प्रबंध किए गए हैं। मनीष यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: धर्म और गौ रक्षक तेजाजी महाराज की दशमी पर भी प्रदेश भर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। तेजाजी की जन्मस्थली नागौर जिले के खरनाल में वार्षिक मेले में आज पहले दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था के साथ जात लगाने पहुंच रहे हैं। ये मेला दो दिन भरेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रात्रि जागरण में कलाकार तेजा गायन व भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। मुख्य मेला सोमवार को आयोजित होगा जिसमें जिले के साथ अन्य जिलों और प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु पैदल और वाहनों से खरनाल पहुंचेंगे। सोमवार शाम को खरनाल से नागौर तक साइकिल दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। मेले को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस, आरएसी, होमगार्ड और गश्ती दल तैनात रहेंगे। सीसीटीवी व ड्रोन से भी निगरानी होगी। इसके साथ मेले के दौरान सुबह 6 से रात 8 बजे तक NH-62 पर खरनाल जोधपुर रोड का यातायात टांगला फांटा से रिंग रोड होते हुए बाईपास की ओर डाइवर्ट रहेगा। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज की दशमी पर शुभकामनाएं दी हैं। रिको ने प्रदेश में अविकसित और अर्धविकसित भूखंडों के लीज नवीनीकरण नियमों में आंशिक संशोधन किया है। रिको की भूखंडों के आवंटन संबंधी नीति में शुरुआती 33 साल की लीज अवधि के आगे 33-33 वर्षों की दो अवधियों तक नवीनीकरण का प्रावधान है। नए प्रावधान से लीज नवीनीकरण पर डे प्रीमियम की व्यवस्था अधिक स्पष्ट और पारदर्शी होगी। साथ ही संबंधित भूमि के दीर्घकालिक उपयोग के लिए एक सुनिश्चित नियामकीय ढांचा भी उपलब्ध हो सकेगा। गौरतलब है कि रिको द्वारा जयपुर, भिवाड़ी, दौसा, कोटा, बीकानेर, राजसमंद और उदयपुर में भूखंडों का ई ऑक्शन के माध्यम से आवंटन किया जा रहा है। इसके लिए 25 सितंबर तक EMD जमा करवाकर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने शूटिंग और क्रिकेट सहित विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की एलावेनिल वलारेवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। इससे पहले वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। मार्शल आर्ट खिलाड़ी सुचिका तारियाल ने इतिहास रचते हुए महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग की सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आज T20 के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इधर भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद कर शानदार शुरुआत की। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। प्रदेश के पश्चिमी और सरहदी भागों से मॉनसून की विदाई शुरू हो गई है। वहीं पूर्वी और दक्षिणी जिलों के साथ ही शेष हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सुस्त रहने की संभावना है। इस बीच विभाग ने उदयपुर और कोटा संभाग में कल कुछ स्थानों पर हल्की बरसात की संभावना व्यक्त की है। मॉनसून के दौरान इस बार अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य या सामान्य से कम दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करने के लिए समन्वित रूप से ठोस कदम उठाना जरूरी। प्रदेश के 305 नगरीय निकायों में कल अध्यक्ष का चुनाव होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में 25 सितंबर को महापौर चुने जाएंगे। लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज के मेलों को लेकर दशमी तिथि पर धार्मिक उल्लास, मंदिरों में आज जागरण। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन,

शूटिंग में 2 रजत पदक हासिल हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। जिले के रामदेवरा स्थित बाबा रामदेव जी की अवतरण तिथि भादवा शुक्ल पक्ष द्वितीया से इस वक्त रामदेवरा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना लेकर भक्त बाबा के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। देश भर से आए श्रद्धालुओं को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की हैं। कानून और शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना की मानव रहित युद्ध क्षमताओं को नई धार देने के उद्देश्य से जैसलमेर में पिछले दिनों ड्रोनाथॉन 2026 आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय मानव रहित प्रणाली उद्योग के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों की क्षमता का आकलन करना रहा। 3 दिन के आयोजन के तहत पोकरण रेंज में युवा और काउंटर यूएस तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में लॉजिस्टिक ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, AI आधारित तकनीक, स्वायत्त नेविगेशन और उन्नत पैलोड जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया। इन तकनीकों के जरिए निगरानी, लक्ष्य भेदन, लॉजिस्टिक और ड्रोन से उत्पन्न खतरों से निपटने की क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया गया। इस आयोजन ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। जैसलमेर में सुरक्षा और सहभागिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बीते दिनों सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रवास के दौरान पुलिस थानों, बॉर्डर आउट पोस्ट और गांवों का जायजा लिया और सीमा पर तैनात जवानों से संवाद किया। श्री शर्मा ने गांव जालूवाला पहुंचकर सीमा संवाद और जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आह्वान किया। नगरीय निकाय चुनाव 2026 के तहत जैसलमेर नगर परिषद के 44 और पोकरण नगर पालिका के 25 वार्डों की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जैसलमेर नगर परिषद के वार्ड परिणामों में भाजपा के 25, कांग्रेस के 15 और 4 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। वार्ड संख्या 23 में कांग्रेस प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी थी। जैसलमेर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से विजय और कांग्रेस से निर्मल पुरोहित मैदान में हैं। इधर ग्राम पंचायतों के वार्डों और सरपंचों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया के तहत संबंधित पंचायत समिति क्षेत्रों के उपखंड अधिकारी कार्यालयों में 24 सितंबर को लॉटरी आयोजित की जाएगी। जिले में गर्मी के तेवर एक बार फिर तेज हो गए हैं। सूर्य देवता के तीखे तेवरों के बीच अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दिन में तेज धूप के कारण शहरवासियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। विकसित भारत जनसेवा अभियान 2026 की शुरुआत जिले में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के साथ हुई। नाचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित शिविर में 61 लोगों ने रक्तदान किया। युवाओं, समाज सेवियों और आमजन ने इसमें उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। वहीं वैशाखी ब्रह्मसर की ऐतिहासिक स्थली पर जिला स्तरीय आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। स्वर्ण नगरी ने 871वां स्थापना दिवस भी परंपरागत उल्लास के साथ मनाया। सोनार दुर्ग में भाटी वंश की कुल देवी माँ स्वांग्या जी की पूजा अर्चना और गायत्री यज्ञ के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसके साथ ही दुर्ग राज महल की छत पर ध्वज पूजन किया गया। जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल देव जी की प्रतिमा का पूजन कर जिले की सुख समृद्धि और शांति की कामना की गई। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए नगर परिषद जैसलमेर शहर के आधारभूत सुविधाओं, सौंदर्यीकरण, खेल और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रहा है। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विभिन्न विकास कार्य प्रस्तावित हैं। जोधपुर रामगढ़ बाईपास लिंक रोड पर महारावल जैसल देव जी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। वहीं सोनार दुर्ग के आसपास हेरिटेज वॉकवे और किला पार्किंग क्षेत्र के सौंदर्यीकरण से पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी के साथ जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: लाइने आज की खास खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कयो प्राकृतिक आपदा मारे असर ने कम करने खातिर साझा रूप से ठोस कदम उठानो जरूरी है। प्रदेश रे 305 नगरीय निकाय माए काले अध्यक्ष चुनाव वेला जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम माए 25 सितंबर ने महापौर चुना जावेला। लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज रे मेला ने ले 10वीं तिथि माथे धार्मिक उचास। मिंद्रा माए आज जागरण और एशियाई खेला माए भारत रो शानदार प्रदर्शन। शूटिंग माए 2 रजत पदक हासिल हुआ। समाचारों रे साथे मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कयो है कि अबार वक्त माए आई कई प्राकृतिक आपदावां सुओ साफ कर दियो है कि जलवायु रे असर ने कम करने खातिर ठोस कदम उठानो जरूरी है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली माए पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य माथे राखी जी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रे समापन सत्र में संबोधित कर रही ही। श्रीमती मुर्मू कयो कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रियो है कि जलवायु सु जुड़ो जोखिम घणो गंभीर हो गयो है। वणा इन समस्या ने रोकने और उनसु निपटने खातिर स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर माथे सगला संबंधित पक्षारे बीच सक्रिय सहयोग ने मजबूत करने री जरूरत माथे जोर दियो।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: ध्यानयोग है कि सम्मेलन रो आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT कानिसु करियो गयो हो। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य रे विषय माथे राखी जी 2 दिना रे इन सम्मेलन माए न्यारा न्यारा देशा और खेतरा माए न्यायपालिका रे काम करने रे तरीका वैज्ञानिक जानकारी पर्यावरण से जुड़िया प्रशासनिक अनुभव और संस्थागत कार्य प्रणाली ने साझा करने रो मंच प्रदान करियो। प्रदेश रे 305 नगरीय निकाय माए काले अध्यक्ष रो चुनाव करियो जावेला। जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका रे कुछ एक वार्डा माए पाछो मतदान रे चालता वठे 25 सितंबर ने वोट डाले जावेला। काले उदयपुर बीकानेर अलवर पाली और अजमेर नगर निगम माए महापौर पद खातिर वोट डाले जावेला। जबकि भीलवाड़ा और भरतपुर माए पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। आ दोनों नगर निगम माए भारतीय जनता पार्टी रा महापौर चुना गया है। काले रे चुनाव माए परंपरागत रूप से खास मुकाबलो भाजपा और कांग्रेस पार्टियां रे बीचे ही मानो जा रही है। हालांकि कई जगह निर्दलियाड़ी भूमिका भी खास बनी है। उदयपुर नगर निगम माए भाजपा रा महापौर बनना तय है। वटी ने पार्टी पारस सिंह ने प्रत्याशी घोषित करियो है। इनी तरह अलवर माए भी भाजपा सबसे बड़े दल रे रूप माए सामी आई है और अठे निर्दलिया रे सहयोग सु पार्टी रो बोर्ड बनतो दिख रही है। पाली और अजमेर नगर निगम माए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनर उभरी है। पर बहुमत रे खातिर जरूरी पार्षदा ने समर्थन वास्ते वाने निर्दलिया रो सहयोग लेनो वेला। बीकानेर नगर निगम माए कांग्रेस साफ बहुमत मिलो है। वठी ने पार्टी रा अनिल कल्ला रो मेयर बनो लगभग तय है। नशा मुक्त भारत अभियान रे तहत देश भर माए कई गतिविधियां राखी जा रही है। अभियान रे तीजे चरण रो शुभारंभ आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पंजाब रे फाजिलका जिले सु करियो। केंद्रीय मंत्री कयो के ओ अभियान देश री भावी पीढ़ी ने नशेरी लत सु बचावन रो कार्यक्रम है। वणा कयो के केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे नेतृत्व माए एड़ा कई कार्यक्रम हाथ माए लिया है जिका समाज सुधार सु जुड़िया है। इन रो मकसद राष्ट्र ने विकसित भारत बनाना है।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें

0: सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: इन बीच देशव्यापी अभियान के तहत आज नशा मुक्त भारत साइकिल रैली राखी जी, कई जगह मोटियारा ने नशा नी करने री शपथ दिराई जी। कार्यक्रम में माए युवा और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है, बड़ी तादाद में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुआ। जोधपुर वायु सेना स्टेशन माथे इन दिना भारत और जापान री सेनावां रे बीच है वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 संचालित करियो जा रही है। वायु आत्मरक्षा बल रे साथे साथ है द्विपक्षीय अभ्यास माए उन्नत परिचालन मिशना और दोनों वायु सेनावां रे बीच है व्यापक पेशेवर आपसी तालमेल माथे ध्यान केंद्रित करियो जा रही है। 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार ने पूरू वेला। अभ्यास माए भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30, MKI और राफेल समेत न्यारा न्यारा तरेरा आगे होर लड़न वाला लड़ाकू विमान रे साथ है भाग ले रही है। वटिने जापान री वायुसेना AF-2A लड़ाकू विमान रे साथ है हिस्सों ले रही है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एयरोस्पेस परिचालन तालमेल में बधार दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक साझेदारी में दर्शावे है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सुन रिया हो। भादवेरी दसवीं तिथि माथे काले लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज रा मिंदरा और दुणा माथे धार्मिक उचासरो माहौल रहवेला। जैसलमेर स्थापित रामदेव रा माए चाल रिया सालान मेलो परवान माथे है। काले आखिरी दिन महा आरती रे साथ मेले रो समापन वेला। माणा जैसलमेर खबर नवीस बतायो कि 9 दिना रे मेले माए राजस्थान और आसे पासे रा राज्यां सु घणी तादाद माए श्रद्धालु बाबा रे जयकारे साथ भिड़ा हुआ।
2: रामदेवरा में चल रहे लोक देवता बाबा रामदेव के मेले में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगी पताका और घोड़े लेकर देश के विभिन्न कोनों से आए भक्त उत्साह एवं उमंग के साथ बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु अपने साथ बड़ी बड़ी ध्वजाएं और घोड़े लेकर बाबा के जयकारे लगाते हुए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के 4 चौकर प्रबंध किए गए हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: धर्म और गो रक्षक तेजाजी महाराज री दशमी माथे भी प्रदेश भर में धार्मिक आयोजन हो रहा है। तेजाजी री जन्मस्थली नागौर जिले रा खरनाल माए सालाना मेले माए आज पहले दिन भी घनी तादाद माए श्रद्धालु आस्था रे साथ है जात देवन पहुंच रहा है। ओ मेलो 2 दिन भरेला और ब्यूरो माणा खबर नवीसु।
3: रात्रि जागरण में कलाकार तेजा गायन हुए भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। मुख्य मेला सोमवार को आयोजित होगा जिसमें जिले के साथ अन्य जिलों एवं प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु पैदल और वाहनों से खरनाल पहुंचेंगे। सोमवार शाम को खरनाल से नागौर तक साइकिल दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। मेले को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस, RSC, होमगार्ड और गश्ती दल तैनात रहेंगे। CCTV व ड्रोन से भी निगरानी होगी। इसके साथ मेले के दौरान सुबह 6 से रात 8 बजे तक NH-62 पर खरनाल जोधपुर रोड का यातायात टांगला फांटा से रिंग रोड होते हुए बाईपास की ओर डाइवर्ट रहेगा। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े प्रदेशवासिया ने बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज जी दशमी माथे शुभकामनावां दी है। राज्यपाल आपे संदेश माए कहो है कि लोक देवता रामदेव जी और तेजाजी रु जीवन लोक कल्याण ने समर्पित रियो है। जापान रा नागोया माए चाल रिया 20वें एशियाई खेला माए आज भारतीय खिलाड़ी शूटिंग समेत न्यारी न्यारी खेल घोड़ा माए शानदार प्रदर्शन करियो है। भारत री एलावेनिल वलारीवन 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत होड़ रा रजत तमगो आप रे नाम करियो। वना टीम रे रजत तमगे रे पाछे आप रो व्यक्तिगत रजत पदक जीत्यो है। इनसु पहलिया वलारीवन सोनम मस्कर और विदर्शा विनोदरी टीम ने देश री महिलावारी 10 मीटर एयर राइफल टीम होड़ रो पहलो रजत तमगो दिलायो। मार्शल आर्ट खिलाड़ी सूचिका तारियाल इतिहास रचता हुआ महिलावां ने 60 किलोग्राम वर्ग रे सेमीफाइनल माए पहुंचर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स माए भारत रो पहलो तमगो पक्को कर दियो है। वठी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज T20 रे दूजे सेमीफाइनल माए बांग्लादेश ने 114 रना सु हरार फाइनल रो टिकट कटायो। फाइनल मैच मंगलवार ने भारत और श्रीलंका रे बीच खेलो जावेला। अठी ने भारतीय महिला हॉकी टीम पूल बी रे पहले मुकाबले माए उज्बेकिस्तान ने 19-0 सु रोंद और शानदार शुरुआत करी। भारत रो आगलो मुकाबलो काले इंडोनेशिया सु वेला। अब मौसम प्रदेश रा पश्चिमी और सरहदी भागासू मानसून री विदाई।

शुरू वेगी है वठिने पूर्वी और दक्षिणी जिला रहसाथ है ही बाकी हल्का माए बिरखारी गतिविधियां कमजोर पड़ रही है। मौसम महकमा रमजब आवता कुछ एक दिन आता ही प्रदेश रा घनकर भागा माए मानसून सुस्त रहने की आस है। इन बीच महकमा उदयपुर और कोटा संभाग माए काले कुछ एक थोड़ा माथे हल्की बिरखा होने री आस जताई है। सामान्य वक्त सु करीब दो दिनारी देरी सु विदा हो रही है मानसून रे चालता इन बार घनकर थोड़ा माए बिरखा सामान्य या सामान्य सु कम दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला आ हर महीना प्रसारित करया जावन वाला ई कार्यक्रम री 137वीं कड़ी वेला ई सारू आप ई 28 अगस्त ताई मुफ्त नंबर 1-800-117-800 मथे राय भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए ई विचार भी भेजा जा सके है। और आखिर माए खास खास खबर एक कर फेरू सुनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कयो प्राकृतिक आपदा मारे असर ने कम करने खातिर साझा रूप से ठोस कदम उठानो जरूरी है। प्रदेश रे 305 नगरीय निकाय माए काले अध्यक्ष रो चुनाव वेला जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम माए 25 सितंबर ने महापौर चुने जावेला। लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज रे मेला ने ले दशमी तिथि माते धार्मिक उछास निंद्रा माए आज जागरण और एशियाई खेला माए भारत रो शानदार प्रदर्शन शूटिंग माए दो रजत पदक हासिल हुआ। इंद्र साथे ही प्रादेशिक समाचार आरो और बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला।

0: का आमिर चैनल है।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से राजस्थानी प्रादेशिक समाचार FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मही चैनल है। इस समय शाम के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है चौपाल कार्यक्रम।

0: चौपाल कार्यक्रम में गाम में स्वरा मटाया वाला सब किसान भाइयों ने बोलो ने शंकर भाई नु राम राम। किसान भाइयों देखो आज नो टेम है मैं कितनी बढ़िया हवा जो है सालवी थे की है तो साटा ना दाड़ा है सारे मेर हरियाली भी थे रही है। किसान भाइयों सब अपने खेती बाड़ी में लागे थका है पर हाथे अपने में एक गंभीर विषय ने माते भी सोचू जुए जे है शिक्षा। शिक्षा जो है ये आज नी आवश्यकता है ने शिक्षा जितनी वधारे लोगों तक पहुंचेगा इतना लोग जागरूक थेगा ने समझदार बनेगा। तो मारो जोर जो है ये आनी बात माते है कि बालिका भी जो शिक्षा है ये घनी महत्वपूर्ण है। तो बालिका जो है ये शिक्षित करवा में आपने समाज में माँ बाप ने भी ने सब ने सहयोग थकी बालिका शिक्षा ने बढ़ावो अपने आने से को आने माते मारी जे एक बातचीत थी है अध्यापिका श्रीमती टीना शर्मा थकी इन्हें थकी जे बातचीत थी है इन्हें बालिका शिक्षा ने माते जे बात बताई है अपने पहले ही हमरा ने पसे अपने बड़ी बात करेंगे।
1: किसान भाइयों आज अपने बात करेंगे बालिका शिक्षा ने माते जिन्हें वैसे अध्यापिका है टीना शर्मा इनने थी कि अपने बालिका शिक्षा ने बारे में बातचीत करेंगे। टीना जी राम राम।
2: राम राम।
1: टीना जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर आप बालिका शिक्षा जो है ये इतनी

0: महत्वपूर्ण किन है?
1: देखो, शिक्षा हर सोरा नो अधिकार है, चाहे सोरो हो या सोरी, लेकिन आनामी जो बालिका शिक्षा है इन महत्व एटली बढ़ी जाए, क्योंकि एक भली लिखी सोरी जो अगर जाए एक शिक्षित परिवार में एक जागरूक समाज में नींव मिले, जे वेरा सोरी बने ते ई आपड़ा स्वास्थ्य नो अधिकार ने जिम्मेदारी ने समझे, ई आपड़ा जीवन ना फैसला आत्मविश्वास ने हाथ लई सके, भविष्य में आर्थिक रूप थकी आत्मनिर्भर भी बनी सके।
0: बिल्कुल सही कीधु मैडम तमे। पण देखो आप ग्रामीण क्षेत्र है एने आपणे केवी वेळाए देखवा में आवे के बेटियों ने जो भणाई है ये कुछ कक्षा तक चाले एने बाद में छूटी जाए, तो आने पछाड़ी मैडम हुं कारण थई सके?
1: देखो कई कारण थई सके, जिम रूपये पैसा ने दिक्कत है, घर नो काम काज है, खेती बाड़ी नो काम काज है, पशुओं नो काम काज है, कई कई वेळा परिवार में पुराने सोच भी आनु कारण रहे। कई माता पिता आज भी सोचे कि सोरी ने अगड़ी जाए नु घर संभाल भाई माते आटलो टाइम खर्च करने जरूरत है, पण अमने आ सोच बदलवा जरूरत है।
0: बिल्कुल तमे सही कीधु, तो माता पिता ने अपने हुं कहेवुं जोईए के सोरी ने भणाववानुं हशे?
1: मैं माता पिता ने आ संदेश आलवो चाहूं कि बेटी ने भणाववा बदले अमने समय नो निवेश करवो जोईए, क्योंकि बेटी जेटली शिक्षित रहेगा ने आत्मनिर्भर रहेगा एटलो परिवार मजबूत बनेगा।
0: बराबर,
1: एटली सोरी ने स्कूल मोकलो, एनी भणाववानी रुचि लो, अगर भणाववानी दौरान कई दिक्कत आवे तो तमे विद्यालय में जो शिक्षक है, शिक्षक शिक्षिका है, एम तो की बातचीत कर समाधान कर सको।
0: खूब अच्छी बात। मैं कई माता पिता भी कहे है कि लड़की जो है ये घर नो काम ही के तो ठीक रहे, पर भणाई हती घर नो काम संभव है?
1: केम नहीं, बिल्कुल संभव है, घर नो काम ही कोई अच्छी बात है, लेकिन खाली सूर्य थकी घर नो काम करावो ने ए वजह थकी अमे भणाई प्रभावित करवो ई सही बात नहीं। सोरी ने सोरो बे ने घर में काम की मदद करनी जुए ने बे ने शिक्षा नो समान अवसर आलवो जुए, अमने बच्चे ने ये शिकाड़वानी जरूरत है कि घर परिवार में जिम्मेदारी सब नहीं रहे।
0: खरी बात है, सबने मिली ने घर हंडरवे कि नहीं, एकला नहीं व्यक्ति ने जिम्मेदारी नहीं है, केवल एक सोरी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं है, महिला ने जिम्मेदारी नहीं है कि ये एकली घर हंडारे ने आदमी ने हंडारे ने बेटा ने हंडारे। बहुत अच्छी बात की तमें। अरे बालिका ने जो उच्च शिक्षा है, कई बार देखा कि बेटियां जो दसवीं ने बारहवीं ने बाद अगड़ी भरव चाहे पर परिवार उन्हें भरव रोकी दे, तो आवा परिवार ने अपने हरते उन्हें समझाला के भरवा दे। मैं
1: आवा परिवार थे कि कहवो चाहूं कि अगर तुम्हारे सोरी भरव चाहे तो इन्हें अगड़ी बढ़वा अवसर जरूर आ लो। आज शिक्षण क्षेत्र में सूर्य बल्ले खूब सारा अवसर है, सूर्य डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक वकील अधिकारी वैज्ञानिक खिलाड़ी ने छोटा मोटा धंधा कर उद्यमी भी बनी सके, तो जरूरत सिर्फ आने बात नहीं है कि सूर्य ने सही मार्गदर्शन में मौको मिले।
0: खरी बात की थी। सरकार ने है बालिका ने जो शिक्षा हारू कई योजनाएं भी चलावे है, तो माता पिता ने पास अन्य योजना की जानकारी भी रखनी जोईए?
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, माता पिता ने विद्यालय में जो शिक्षक है विभाग है एम थकी जानकारी लेते रहू जुए, लड़कियों ने शिक्षा बल्ले महिला वाली छात्रवृत्ति ही प्रोत्साहन राशि ने कई सुविधाओं में लाभ लेव जुए, कई वेरा जानकारी ने अभाव में सूर्य योजनाओं में लाभ नहीं ले पाती, तो एटले मामले जागरूक रहो खूब जरूरी है।
0: खूब अच्छी बात है तारी। मैं अगर कोई गांव में जो लड़की है ने स्कूल जाए छोड़ दे अचानक आई रीति बंद थेगी तो शिक्षक ने समाज में मदद कर सके?
1: हाँ सबसे पहले तो अपना ने यही पतु लगाड़व जुए कि सूर्य स्कूल केम छोड़ू है, एने पसाड़ी हो आर्थिक कारण है कि पारिवारिक कारण है कि सुरक्षा नो कई कारण है कि एने पढ़ाई में कई कठिनाई आ रही है, तो कारण समझी ने आप समाधान काढ़ी सक, आना में शिक्षक अभिभावक ने जो समाज है ई मिली ने कोशिश करे तो खूब सारी बेटी है वापस स्कूल थकी शिक्षा थकी जुड़ी सके।
0: तो आने हिसाब तो एम कही सकते बालिका ने जो शिक्षा है खाली परिवार की जिम्मेदारी से है।
1: सही बात है, बालिका ने जो शिक्षा है ये परिवार विद्यालय पूरा समाज में साझी जिम्मेदारी है, अमने वो वातावरण बनाव पड़ेगा कि जहाँ पर हमारे सूर्य वगर कहे डर थी कि भूली सकी आपड़े विचार मिली सकी ना आपड़ा जो जीवन ना उद्देश्य एने पूरा करवाने दिशा में अगड़ी बढ़ी सके।
0: घनी सुंदर बात कीधी तमे। मैं अंत में तमे जाते जाते हमारा आप महिलाएं हैं मैं बालिकाएं हैं इनमें हाथे हाथे माता पिता भी हैं इनमें हो संदेश आलो चाहोगा?
1: मारा संदेश एकदम सरल है, बेटी ने बोझ नखी समझो अवसर समझो एने भणावो अगाड़ी बढ़ावो ने माते विश्वास करो बेटी ने केवल आस मत बताड़ो कि

0: करो जो है, बल्कि इन्हें एम पूछो कि ई जीवन में हूँ करो चाहे नेमो बेटी थकी के केवो चाहे कि आपने उद्देश्य में छोटो मत समझो, मेहनत करो, शिक्षा प्राप्त करो, ने आत्मविश्वास ने हाथों अगाड़ी बढ़ो।
1: मैडम आप बालिका शिक्षा में तो खूब अच्छी जानकारी आली, ने बालिका ने अगाड़ी बढ़ो जो है, पढ़ोगी बेटी मतलब बेटी बढ़ेगा तो बढ़ेगा उन्होंने परिवार ने जो भविष्य की बेटी है एक मजबूत समाज की पहचान भी है। फेरी मिलेगा, राम राम।
0: राम राम।
2: किशन भाई देखो कितनी बढ़िया बातचीत अपना अध्यापिका बताड़ी कि बेटी ने जो है ये बनाव घणो जरूरी है, आज की आवश्यकता भी है। बेटी ने जो है ये आत्मनिर्भर बनाव भी जरूरी है ताकि परिवार भी जो है ये आगाड़ी बढ़े। किशन भाई अभी मारो मन थी रू है कि एक बढ़िया सु भजन आप हमारा ने पछे आप आगे बात करें।

गणपति की माता पार्वती है। ये आप लोग हम सभी जानते हैं, पिता महादेव हैं, दो पत्नियां इनके रिद्धि और सिद्धि, ये भी अपन जानते हैं।

दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी

0: और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: किशन भाई, कितलू बढ़िया भजन अपने हम लोग गणेश जी नो ने और या गणेशोत्सव भी साली रो थको है ने सब किसान भाई जो है ये खेती बाड़ी में आते आते गणेश उत्सव में भी आनंद ले रहे हैं, मैं भक्ति भाव में डूबा थका है। किसान भाई, आना मौसम में भाई खेती बाड़ी हारू बारिश जो है ये खूब खुशी लेने आवे, पर हाथे हाथे जो पशुपालक है इनने वास्ते कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी लेनी आवे। नमी है, कीचड़, गंदु पानी ने पशुशाला जो है इनमें बढ़ती जो सीलन है इन कारण जगह पशुओं ने कई तरह ना संक्रमण ने बीमारियों ने खतरों जो है ये बढ़ी सके। आना मौसम में आपने में कितनी बातों में विशेष ध्यान रखो जरूरी है। सबसे पहले आपने बात करो खुरपका ने मुंहपका रोग नी, आज ये पशुओं में तेजी से फैलवा वालो संक्रामक रोग है। आने में पशु ने जो मुंह है इनमें छाला अत्यधिक लाराबी ये आना लक्षण है। पैर में जो खुर है इनमें आए पाए घाव जैसा लक्षण दिखाए, पशु ने सालवाने में भी परेशानी थी सके। अने बचाव वास्ते समय में माते टीकाकरण साफ सफाई ने बीमार पशु जो है इन्हें स्वस्थ पशु थे की अलग रखो घणो जरूरी है। यदि पशु ने भी आवा लक्षण दिखाई दे तो आपने तरत पशु चिकित्सक तक संपर्क करो जुए। आने अलावा एक गंभीर संक्रमण वाली बीमारी है गलघोंटू। बरसात में मौसम में आने बीमारी नो जोखिम कुछ क्षेत्र में बढ़ी सके। आने में पशुओं में तेज बुखार, सांस लेवाने में परेशानी, गराने में या गर्दन में आए पाए सूजन जैसा लक्षण दिखाई, आवा मामला में देरी करवो नुकसानदायक थी सके। एटले लक्षण आपने में दिखाते ही आपने में तुरंत पशु चिकित्सक ने सलाह लेनी जरूरी है। बरसात में मौसम में एक मोटी समस्या है कीचड़ में गीलोपन। लगातार गीली जमीन जो है इन माते उबर रहवा दे की पशुओं ना जो खूर है इनमें में संक्रमण थी जाए ने बीजी समस्या थावानी भी संभावना रहे। एटले पशुशाला जो है इनी जो जमीन है इन्हें यथासंभव आपने कोशिश करनी है कि इन्हें अपने हुकू रखा ने साफ भी रखा। पानी की जो निकासी है इन्हें अपने उचित व्यवस्था करनी पड़ेगा। मैं पशुओं ने जो है लंबा समय तक कीचड़ में अपने उबू नहीं रहवा देव है। बरसात में मक्खियां हैं बीजा कीड़ा है इनमें संख्या बढ़ी जाए, ठंडा वातावरण में दूध जो है इन्हें भी दूषित थावानो खतरो बढ़ी जाए। एटले दूध दूहवाने पहले पशु ना जे थन है ने अपना जे हाथ है इनमें अपने सफाई कर लेनी जुए ने दूध जे है ये साफ बर्तन में अपने निकालव जुए। पशुओं ने

अभी चौपाल कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आइए सुनते आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम ने सुनबाला सगला किसान भाई बहना ने राम राम सा और सागे है अश्विनी भाई
1: थाने भी घनो घनो राम राम रेणु जी घनो घनो राम राम और देखो आज है मतलब काल छे बाबा रामदेव जयंती
0: जी सर
1: और देखो बाबा रामदेव जयंती की बात करें तो बाबा रामदेव जयंती राजस्थान का प्रमुख लोक पर्व में से एक मानी गई छे और यो पर्व लोक देवता बाबा रामदेव जी की स्मृति में भी मनाया जाए छे।
0: जी जी
1: बाबा रामदेव जी को राजस्थान सहित देश का कई अनेक क्षेत्र में श्रद्धा और आस्था के साथ साथ अपने याद भी करी जाए छे और बाबा जीवन मानवता समानता भाईचारा और सामाजिक सद्भाव को संदेश भी देव छे। यानी बाबा रामदेव जी को प्रमुख धाम रामदेवरा राजस्थान का जैसलमेर जिला में स्थित छे जड़े हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पधारे छे।
0: जी सा बड़ी चोखी जानकारी दी। इसके अलावा बाबा रामदेव जी जो छे जाने राम सा पीर नेतलरा भरतार रुणेचारा धनी कई नामा सु जानो जावे है और राजस्थान रा पांच पीरा जिया पाबू जी हड़बू जी रामदेव जी मांगलिया जी और गोगा जी इनमें सबसे जो प्रमुख मान्यो जावे है वे रामदेव जी नहीं मान्यो जावे है।
1: बिल्कुल देखो बाबा रामदेव जी की बात कर रहे हैं आपा जागो मेड़ो चाल रहे तो छे लेकिन मेन जो मेला की बात करा वो काल है दस में तो बाबा रामदेव जी को जो जन्म छे राजस्थान का पोखरण क्षेत्र के रूणीसा गांव में हुए छो।
0: जी जी
1: और वहां का पिताजी को नाम अजमल जी छो और माता जी को नाम मीणा देवी।

0: बताया जाए छे। लोक मान्यता के अनुसार बाबा रामदेव जी ने अपना पूरा जीवन गरीबा के लिए, जरूरतमंदा के लिए और वंचित लोगों के लिए सेवा में लगाया था
1: जी जी।
0: और माने समाज में फैली ऊंच नीच और भेदभाव की भावना को विरोध भी करे थो और सभी मनुष्य ने समान मानता मानवा को एक संदेश दिया था। यानी बाबा रामदेव जी को जो हिंदू समाज में लोक देवता के रूप में माने एक अलावा मुस्लिम समुदाय में रामसा पीर के रूप में भी माने श्रद्धा प्राप्त हुई है और यही कारण है कि वहां की जयंती सामाजिक और धार्मिक सद्भावना को एक प्रतीक भी माने हुए थे। यानी बाबा अनुयाय को विश्वास है कि बाबा रामदेव जी ने लोगों में प्रेम सेवा सत्य और परोपकार के मार्ग में चल बाकी बाने प्रेरणा दिया छे।
1: सही बात कही अश्विनी भाई। इसके अलावा बाबा रामदेव जी ने छुआछूत और जाति पाति रो भी खंडन कियो हो। बाबा रामदेव जी कहियो हो कि भगवान रे दरबार में कोई ऊंच नीच को नहीं हुए। उना दलित समाज री बेटी थी डाली बाई, बिना आपकी धर्म की बहन बनाई और उन्हें आपने बराबर रो सम्मान दियो। इसके अलावा भी कामड़िया पंथ की जो स्थापना करी वो बाबा रामदेव जी ने करी। एक पंथ माए सगली जातियारा लोग भेड़ा हो जागरण कर रहे है और अबार जिया मेड़ो चाल रहे है तो रात भर भजन कीर्तन हुए है बाबा रामदेव जी ने लेर। एक अलावा महिला सशक्तिकरण की बात भी कही बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी कहिया कि आदमी के साथ साथ जो घर की लुगाया चे वाने भी बराबरी को हक देना चाहे जी। कामड़िया पंथरी जो महिला है वह काई करे है इमें 13 ताली नृत्य करे है। उनमें केवल राजस्थान और भारत में दुनिया भर माए प्रसिद्ध है 13 ताली नृत्य।
0: बिल्कुल, यानी आप कह सका था कि रंजी देखो बाबा रामदेव जयंती जो श्रद्धा सेवा और सामाजिक समर्थता का पुरुष है, आपने ये अवसर माड़े बाका जीवन और आदर्श से प्रेरणा लेनी चाहिए
1: जी, जी, जी।
0: समाज में भाईचारों बढ़ाना चाहिए, जरूरतमंदा की सहायता करनी चाहिए और मानवता की सेवा करवा को संकल्प लेना चाहिए
1: जी जी।
0: यानी यही बाबा रामदेव जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और यह बात तो बढ़िया है कि आपने जो अपने समाज के मायने से जो ऊंच नीच को तो बिल्कुल ही अठा देना चाहिए, जटे भाईचारों को छो जटे आपने सेवा को भाव थे वह आपने बढ़ाना चाहिए
1: जी।
0: और देखो आपा बाबा रामदेव जी के बारे में बता रहे थे तो क्यों नहीं एक बाबा रामदेव जी को प्यारों से लोग भी सुन लिया
1: तो सुनाओ साहब।

0: रूणी चारा धनिया राजा रा महत्वपूर्ण गीत आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। अन कार्यक्रम में आगे बढ़ावा खातिर जानकारी लेवा और विशेषज्ञ श्री शशिकांत जी गोयल आपने जानकारी देवेला पादप वृद्धि नियामकों का प्रयोग और कृषि उत्पादन। तो अश्विनी भाई लिया जानकारी।
1: बिल्कुल
2: श्रोताओं, आज आपने सागे कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर शशिकांत गोयल जासु आप जाना ला पादप वृद्धि नियामक और कृषि उत्पादन की बात कर सा। सब पहले डॉक्टर शशिकांत गोयल सहायक प्राध्यापक श्रीकरण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर सो आप आया हो, आप लोग घने मानो स्वागत। राम राम साहब।
3: राम राम साहब।
2: डॉक्टर साहब, आप पादप वृद्धि नियामक और कृषि उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो सब पहले यो ही बताओ कि पादप वृद्धि नियामक हो वे काई है?
3: पौधों की समुचित वृद्धि व विकास केवल जड़ों द्वारा शोषित खाद्य पदार्थों तथा पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि पौधों में ही कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिनकी थोड़ी सी मात्रा के प्रयोग से पौधों की सभी शरीर क्रियात्मक गतिविधियां अत्यधिक प्रभावित होती हैं, और जो ये रसायन निकलते हैं हम उन्हें ही पादप वृद्धि नियामक कहते हैं।
2: जी अच्छा, अब यूं बताओ कि प्राकृतिक रूप से कई है पादप वृद्धि नियामक अपने पौधा में रहवे?
3: हाँ, ये पादप वृद्धि नियामक प्राकृतिक रूप से पौधों में बनते हैं, साथ ही साथ इन्हें कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है। कृत्रिम रूप से तैयार किए गए पादप वृद्धि

0: नियमों का उचित मात्रा में प्रयोग करके हम फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं।
1: अच्छा अब यूँ बताओ डॉक्टर साहब कि ये पादप वृद्धि नियामक करे काई है, काई आंको काम है और आंकी वजह से कई आपना उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके है।
0: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों का और सभी खेतीबाड़ी करने वालों का प्रमुख उद्देश्य जो है फसलों, फल वृक्षों और सब्जियों के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना है और ये वृद्धि पौधे की उचित बढ़वार पर, सही समय पर फूलों का आना, फलों का लगना व झड़ने की मात्रा, सब्जियों व फलों के संग्रहण काल को बढ़ाने के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं। फलों के पकने में देरी करनी हो या जल्दी करनी हो बाजार भाव के अनुसार कि भाई अभी टमाटर महंगा है तो थोड़ा देरी कर दें है ना, या जल्दी कर लें, उस हिसाब से भी इनको हम काम में लेते हैं।
1: अच्छा तो पादप वृद्धि नियामक कौन कौन सा हो गया, आपको नाम बताओ सर।
0: प्रकृति में मुख्य रूप से 5 तरह के पादप हार्मोन पाए जाते हैं। पहला ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है व एब्सिसिक अम्ल है। और ये तो प्राकृतिक रूप से है और बाकी कुछ हमने नए पादप वृद्धि नियामक भी देखे गए हैं जैसे ब्रेसिनोस्टेरॉइड, जेस्मोनेट, सेलिसिलिक एसिड, टर्बोरेंस, पॉलीएमिन्स। अब इसमें भी क्या है, जैसे कुछ प्राकृतिक होते हैं जैसे ऑक्सिन में इंडोल एसिटिक एसिड, जबकि ऑक्सिन का ही अगर हमें कृत्रिम बनाना है तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड 2,4-D, ऐसे साइटोकाइनिन में जो प्राकृतिक रूप से है वो जियाटीन है, जबकि वो कृत्रिम रूप से बनाते हैं उसे हम काइनेटीन या बेंजाइल एडिनिन कहते हैं।
1: अच्छा तो एक काई काम में आवे डॉक्टर साहब, आपको काई काम ही बताओ साहब।
0: इनमें से जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन व साइटोकाइनिन, ये 3 तरह के जो है ये पौधे के कार्य की प्रक्रम को उत्तेजित करते हैं, जैसे जल्दी पड़वार करना, जल्दी फूलों का खिलना, फूलों का लगना। जबकि जो दो अन्य है इथाइलिन व एब्सिसिक अम्ल, वो पौधों के कार्यकारी क्रम को निरोधित करते हैं, मतलब जैसे फलों के पकने की व्यवस्था, फल किस पकते हैं, फूलों का खिलना, पड़वार रुक करके फिर फूल खिल जाते हैं तो वो सब। और जैसे अपन सीड होता है ना बीज, उसकी हम डोरमेंसी को बढ़ाने के लिए इथाइलिन व एब्सिसिक अम्ल को काम में लेते हैं।
1: अच्छा तो आपा आ सारा जो तत्व है आने काम में ले, आपने मन मुताबिक समय पर फसल उत्पादन ले सका।
0: कुछ हद तक हम ऐसा कर सकते हैं।
1: अच्छा या तो सामान्य जानकारी बात तो होगी, अगर आने न्यारा न्यारा आपा हिस्सा में रखा, वर्ग में बांटा तो की तरीका से आने देखे जावे बताओ सा।
0: इसके बारे में हम शुरू से ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन की। ऑक्सिन तनों व जड़ों के ऊपरी सिरों में मिलता है तथा बाद में पौधों के निचले हिस्से को पहुंचाया जाता है। ये ऑक्सिन जो है कोशिकाओं के दीर्घीकरण, जड़ वे तनों का विकास, शीर्ष कलिका प्रमुखता, कलमों से शीघ्र जड़ निकालने के लिए वो फल विकास के लिए उत्तरदायी है। जैसे नींबू के लिए 2,4-D 10 ppm का हम स्प्रे करते हैं तो वो फलों को गुड़ने से रोकता है, जबकि नाशपाती या सेब में हम सोडियम साल्ट का काम में लेते हैं। और यदि हम फलों के लगने में मदद चाहते हैं तो 2,4-D का 25 से 50 ppm का 2 बार छिड़काव करना होता है। और कलम से जड़ निकालने के लिए इसी ऑक्सिन का 200 ppm नींबू में, 4,000 ppm अंगूर में और जितनी भी झाड़ियां हैं जो शोभायमान झाड़ियां होती है, गुड़ल की है या कनेर की, सब जो भी है उसकी भी हमें कलम से जड़ निकालने के लिए 1,000 ppm के रूप में इसे काम में लेते हैं। अब जबकि बात हम दूसरे हार्मोन की करें, जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन प्राकृतिक रूप से नई पत्तियों में, जड़ों के ऊपरी भागों में पाया जाता है और मुख्यतः ये अपरिपक्व कच्चे बीजों में बनता है। इसका प्रयोग पौधे की वृद्धि के काम में और किसी में जेनेटिकली या आनुवंशिक रूप से बोनापन है तो उसको हटाने के लिए, सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए और पौधों में पुष्पन को बढ़ाने। पुष्पन में भी ऐसा है जैसे कद्दू वर्गीय में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु 50 ppm का हम स्प्रे करते हैं, चाहे जिससे कि फसल में काफी ज्यादा उत्पादन होता है
1: जी।
0: अब बात करें साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन जनरली जो सामान्यता जो है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करने के काम में आता है, पौधे के परिपक्व काल में देरी करने के काम आता है, पुष्पन को प्रेरित करता है और टिश्यू कल्चर टेक्निक जिससे आप नए पौधे बनाते हैं पुष्पक संवर्धन में भी ये बहुत काम आता है।
1: तो डॉक्टर साहब यू आप जो कह रहे हो नया पौधा बनावा, एक पौधा से दूसरा पौधा बना सका?
0: हाँ, एक पौधे के किसी भी भाग से शीर्षस्थ कलिका के द्वारा हम नया पौधा तैयार कर लेते हैं। ये मुख्यतः केला, वारपाठा या सेव, ये टिश्यू कल्चर टेक्निक है, वो एक अलग विषय है, उसमें ये हार्मोन बहुत विशेष रूप से काम करता है।
1: और जो काश्तकार आजकल खेती में नवाचारा ने अपना लिया है और जो नर्सरी लगा रहा है,

0: वे इन्हें ज्यादा काम में ले हुए हैं।
1: किसानों को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि आप सभी नवाचार करें, नई नई चीजों को सीखें और मुख्य रूप से ये सभी चीजें शुरू से होने को तो है, किंतु जो नवाचार करता है, जो किसान सीखने की प्रवृत्ति रखता है, वो अपने आसपास कृषि अधिकारी से या आसपास कोई कृषि विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, वहाँ के प्रोफेसर वगैरह से मिले, अपने सैंपल को लेके आए, उसके बारे में जानकारी ले और इन चीजों का प्रयोग करे। अब हम चौथा वृद्धि नियामक जो है एब्सेसिक अम्ल की बात करें तो ये मुख्य रूप से परिपक्व पत्तियों में पाया जाता है और ये पादप की वृद्धि को रोकता है। जब हमें पौधे की वृद्धि रोकनी होती है तब हम इसका स्प्रे करते हैं और बीज अंकुरण को रोककर उसकी डोरमेंसी बढ़ाने के लिए भी हमें काम में लेना होता है, जबकि ये कोशिका विभाजन में वृद्धि को कम करता है
0: जी।
1: और पर्णरंध्रों के खुलने में बंद करने के लिए उत्तरदायी है। अब हम अंतिम बात करेंगे इथाइलिन की। इथाइलिन ये भी एक प्राकृतिक नियामक है जो कि पौधों के कोशिका द्रव्य में गैस के रूप में पाया जाता है। इसे कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है। आप देखते हैं फलों को पकाने में इसका काफी काम आता है, केले को, पपीते को, सेब को पकाने में काफी भूमिका निभाता है और ये साथ ही साथ मादा पुष्पों की वृद्धि भी करता है और नर पुष्पों की संख्या घटाने में बहुत सहायक है। इसका एक जिसे एथेफोन के नाम से आता है वो कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर 600 ppm का हमें स्प्रे करना होता है
0: जी।
1: और फलों को पकाने के लिए केला वे सेव में हम इथेफोन को 500 ppm के रूप में काम में लेते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, या तो आप बहुत विस्तार से बताया एक एक जो पादप वृद्धि नियामक है न्यारा न्यारा बाके बारे में, आने काम में लेबा की विधि भी बताओ ताकि जो काश्तकार सुन रहा है वे इन्हें चौकी तरीका गुण पावे समझ पावे।
1: सामान्यतः ये पादप वृद्धि नियामक है, इनको अलग अलग रूप में काम में लेते हैं। ये पाउडर के रूप में भी आता है, द्रव के रूप में भी आता है, लेही के रूप में भी हम काम में लेते हैं और साथ ही साथ वाष्प या एरोसोल के द्वारा भी लेते हैं, जो बहुत बढ़िया नोजल से हम इसका स्प्रे करते हैं। जैसे पाउडर में मिक्स करके कलम से जड़ निकालने में काम आता है, द्रव फार्म में करने में इसका सोल्यूशन बनाना पड़ता है जो ppm या परसेंट सोल्यूशन बनता है, प्रतिशत सोल्यूशन बनता है। लेही के रूप में लिनोलिन मिलाकर के हम इसको काम में लेते हैं और नोजल के द्वारा तो आप सब जानते ही हैं बहुत बारीक अवस्था में इसके साथ छिड़काव किया जाता है। इन पादप नियामकों का उपयोग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किस काम के लिए इसका उपयोग करना है, क्योंकि इनकी सांद्रता, प्रयोग की विधि वे पौधे में इससे होने वाली अनुक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। पादप हार्मोन की अधिक वे कम मात्रा दोनों ही पौधे के लिए नुकसान पहुंचाती है
0: जी। डॉक्टर साहब, जो आप आखिरी बात बोला कि कम वे या ज्यादा वे तो नुकसान भी हो सके है, तो नुकसान तो आप चाहवाई कोने की काश्तकार को आप तो ये चाहवा की बीके आय बढ़े ही बढ़े, और जब आप नवाचारा री बात करा हाँ, कोई भी नई चीज ने सीखा हाँ, तो सावधानी कहीं कहीं रखनी चाहिए जो यो भी महत्वपूर्ण है, तो सावधानियां भी बताओ सर।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सभी किसान भाइयों व श्रोतागण जो सुन रहे हैं समझ सकते हैं कि पादप वृद्धि नियामकों के प्रयोग से आप अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं, किंतु इनका सही तरीके से प्रयोग करें इसके लिए मैं कुछ बिंदु आपको बताना चाहूंगा। यदि हमारे पौधों में कोई कार्य की समस्या है तभी हमें इसे काम में लेना है। इसके लिए आप अपने आसपास कोई कृषि अधिकारी, कृषि विभाग में जाकर के या कोई कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स वगैरह से आप सलाह लेकर काम में लें, अपना सैंपल लेके जाएं, अपनी समस्या बताएं। सभी जगह प्लांट हेल्थ क्लिनिक खुले हुए हैं, आप वहां जाइए, वो आपको वहां सब तरह के वैज्ञानिक मिलेंगे और आपको सही तरीके से सलाह देंगे
0: जी।
1: दूसरा, इन पादप वृद्धि नियामकों की सांद्रता बनाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत सांद्रता से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जहां हमें 200 ppm देना है और कोई को ppm सॉल्यूशन बनाना नहीं आता और उसने 2000 ppm का बना दिया, तो हो सकता है कि जिस काम के लिए हम दे रहे हैं उसकी जगह कुछ अलग ही चीज हो जाए, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में काम में आने वाली चीजें हैं, इसे अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आपको सलाह लेकर ही काम में लेना है
0: जी।
1: इन पादप वृद्धि नियामकों का प्रयोग हमेशा दिन में करना चाहिए, क्योंकि इस समय पौधे के पत्तियों के रंध्र खुले रहते हैं और जब आसमान में बादल छाए हों तब इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और सभी पादप हार्मोन पानी में ही घुलते हैं, इसके लिए जैसे ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, एब्सेसिक अम्ल को हम इथाइल एल्कोहल की 2-4 बूंदों के अंदर मिलाकर के और फिर पानी में मिलाकर घोल बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: जबकि साइटोकाइनिन को सोडियम हाइड्रोक्साइड की 0.1 नॉर्मल सांद्रता के में घोल बनाकर रखते हैं। तो ये इन सब चीजों का पता कब पड़ेगा, जब आप सलाह लेकर काम करेंगे। और यदि आप छिड़काव के रूप में काम में लेते हैं

0: उसमें दो तीन बूंदे साबुन के घोल के डाल दे, जिससे इसके पत्ती से चिपकने की क्षमता बढ़ती है। आशा करता हूँ आप सभी इस जानकारी से लाभान्वित होकर अपने कृषि व्यवसाय को बढ़ाएंगे और अपने उत्पादन को भी बढ़ा पाएंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ने भी यही आशा करा है और यही उद्देश्य माँ को है, इसलिए मैं खेती बाड़ी से जुड़ोड़ा नया नया विशेषज्ञ ने बुलाता रहे, वहाँ जानकारी लेता रहे वहाँ, और आप समय निकाल आया हो काश्तकारा से बात करवाने और अति चौकी जानकारी पादप वृद्धि नियामक और कृषि उत्पादन ई विषय माते आप दिया हो। डॉक्टर शशिकांत गोयल, सहायक प्राध्यापक, श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबने सुवार, तो आप घणो मानो धन्यवाद सा।
2: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉप रोड, टॉप फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
3: मगर किसान भाई ने इतनी बढ़िया जानकारी दिलाया पादप वृद्धि नियामकों का प्रयोग और बाकी कृषि उत्पादन, श्री शशिकांत गोयल साहब से इतनी बढ़िया जानकारी दिलाया, तो जानकारी सुखी सुखी को ने सुना, एक प्यारो सो लोकगीत
4: सुनाऊं सा।

0: सतीश देहरा का गीत चलो चलो मेला में। एक ही साथी खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतो ही। एक ही साथी अश्विनी कुमार सेन
1: और रेणु ने
0: जो इजाजत और करा
1: राम राम, राम, राम सा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं और अब आनंद जी फिल्म संगीत का

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म करीब से, कुमार सानू और संजीवनी की आवाजों में। गाने के बोल लिखे राहुल तिंदौरी ने, संगीत था अनु मलिक का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, फिल्म है हे बेबी, कलाकार शंकर महादेवन, लॉय और साजिद खान की आवाजों में सुनिए। समीर के लिखे गाने के बोल हैं, संगीत दिया शंकर एहसान रॉय ने, सुनिएगा।

हे बेबी मूवी का ये प्यारा सा सॉन्ग आपने सुना शंकर महादेवन लॉय और साजिद खान की आवाजों में। गीतबद्ध किया समीर ने, संगीत निर्देशन था शंकर एहसान लॉय का। श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म है डॉन, अलीशा चिन्ना और महालक्ष्मी सोनू निगम की आवाज में सुनिए। गीत निर्देशन है जावेद अख्तर का, संगीतबद्ध किया शंकर एहसान लॉय ने।

फिल्म में डॉन का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, अलीशा चिनॉय, महालक्ष्मी, सोनू निगम, अन्य की आवाजों में। गाने के बोल लिखे जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर असामलोय का। श्रोताओं, अभी कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। अगला गाना सुनिए, फिल्म का नाम है खाकी। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुनिए गाने के।

फिल्म खाकी का ये सॉन्ग आपने सुना सोनू निगम और शेहर वोशाल की आवाजों में। गाने के बोल लिखे समीर ने, संगीतबद्ध किया राम संपत ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म है फना, कलाकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में सुनिए। गीत निर्देशन है प्रसून जोशी का, संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने।

0: फना फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गाने के बोल लिखे प्रसून जोशी ने, संगीत था जतिन ललित का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला अंतिम गाना सुनिए, फिल्म है तारे जमी पर। शंकर महादेवन, वक्स भार्गव और शंकर शचिदेवा की आवाजों में सुनिए। गीतवत किया प्रसून जोशी ने, संगीत शंकर एहसान लोय का।
1: Why can't you?

0: अक्षर जो नाचे क्या खाई है ना
1: भाषा खराब क्यों ना देते जवाब
0: क्यों करती नहीं ट्राई वाई वाई

into the one. Video.

0: पर। फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: This child can drive anybody mad. Someone please call up his dad.
2: तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा?

श्रोताओं आपने सुना फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को है और आपसे बस थोड़ी देर में सुनिए पहले स्पोर्ट्स स्कैन, फिर 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का, 9:00 सुनिए News@9 का प्रसारण, रात्रि 9:15 पर सुनवाए जाएंगे उर्दू में समाचार, और रात्रि 9:30 पर सुनिए नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशेष शुक्ला। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का हर अपडेट, खेल के मैदान की हर खबर और एशियन गेम्स के अधिक क्लेवर के साथ। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर, जहां पर आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे जापान के नगोया में जारी 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की, जहां भारतीय महिला निशानेबाजों ने अपने सटीक निशानों की बदौलत पदक तालिका में लगाई है भारत की हाजिरी। इसके बाद जानेंगे सुचिका तारियाल की कहानी, जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत के लिए पदक पक्का करके जापान में रचा है इतिहास। वही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर आ पहुंची है एशियाई खेल के फाइनल में। जानेंगे आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले का पूरा हाल और इसके साथ ही कार्यक्रम में चर्चा होगी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम के दमदार प्रदर्शन की तथा बैडमिंटन और टेबल टेनिस से आई खुशखबरियों की। तो जापान में 20वें एशियाई खेलों का आगाज हो गया है और इसके साथ ही आगाज हो गया है दिन ब दिन नए खिलाड़ियों और सितारों के उदय का। इसी कड़ी में भारतीय निशानेबाजों ने आज अपने सटीक निशानों से जापान के आईची नगोया में एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का पदार्पण कराया। एलावेनिल वलारिवेन ने आज महिलाओं के व्यक्तिगत और टीम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया।
1: सिल्वर मेड, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर व्हाट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर नेशन। वलारिवेन 252.4 सेकेंड सिल्वर ऑफ द डे, सेकेंड मेडल ऑफ दीज गेम्स फॉर दिस लेडी।
2: यू हैव सीन द फोकस इन हर फेस व्हाइल शूटिंग, नाउ यू सी हर स्माइलिंग। कांग्रेचुलेशंस टू हर।
3: भारत की एलावेनिल वलारिवेन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक हासिल किया। 2025 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता एलावेनिल ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। स्पर्धा का स्वर्ण पदक जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ जीता। इस शानदार उपलब्धि पर एलावेनिल ने अपने अनुभव कैसे साझा किए, आइए सुनते हैं।
4: For that one given shot. I'm very thankful to the entire government, to the state government for implementing such schemes that help the athletes grow. With all the schemes that have been coming up, we definitely can say that India is rightly towards being called a sporting nation, and we are just miles away from achieving it was more about following my technique, following my process, and being the absolute best that I can do for that one given shot. I'm very thankful to the entire government, to the state government for implementing such schemes that help the athletes grow. With all the schemes that have been coming up, we definitely can say that India is rightly towards being called a sporting nation, and we are just
3: इससे पहले भारत ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेनिल वलारिवेन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। सोनम ने व्यक्तिगत क्वालिफाइंग में चौथे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए 634.1 अंक हासिल किए, जबकि ओलंपियन एलावेनिल 633.5 अंकों के साथ सातवें स्थान पर रही। चीन 1900

0: 4.2 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि भारत ने 1,897 अंकों के साथ अपना दूसरा स्थान हासिल करते हुए 2026 एशियाई खेलों में अपना पहला पदक अर्जित किया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो पदार्पण हो चुका है भारत का, और इसके बाद एक के बाद एक आज भारत ने कई खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने लिए पक्के कर लिए हैं। और इन तमाम परिणामों के बीच आज के दिन की मुख्य सुर्खी रही हरियाणा के रोहतक से आने वाली मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी सुचिका तारियाल। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए में भारत के लिए पहला पदक पक्का कर दिया है। 36 वर्षीय सुचिका ने महिलाओं के ट्रेडिशनल कैटेगरी की 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की अतलाची मेघ बेगलमा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सुचिका कल स्वर्ण पदक की ओर कदम बढ़ाने के इरादे से सिंगापुर की ते हुई हूं के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इससे पहले आज इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सुचिका ने क्या कहा, सुनते हैं।
2: ये मेडल मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और मेरे कोचेस ने मेरे बहुत हार्ड वर्क करा है। मेरे फैमिली ने मेरे ऊपर बहुत एक्सपेंसिव चीजें मुझे मतलब मेरे ऊपर खर्च करी है और मुझे सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर मेरा मेडल आएगा तो इंडिया के लिए एमएमए में ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी।
1: तो एक शानदार खिलाड़ी जिसने अपने शानदार प्रदर्शन से, एक ऐसा खेल जो भारत में परंपरागत नहीं है, जहां पे आपको जूडो, टाइकोंडो, काफी हद तक बॉक्सिंग, कई विदेशी खेल विधाओं का एक साथ संयोजन देखने को मिलता है और विश्व के सबसे कठिन खेलों में शुमार, और इतनी ही कठिन है सुचिका की कहानी। वह 36 वर्षीय है। आज से 24 साल पहले जब वे महज 12 वर्ष की उम्र में थी तो एक छेड़छाड़ की घटना के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं अपनी आत्मरक्षा स्वयं करूंगी, और स्वयं के डिफेंस के लिए उन्होंने इस खेल को सीखा। और आज जापान में जब वो भारत के लिए पदक पक्का कर रही हैं, तो कह सकते हैं कि खुद की आत्मरक्षा से लेकर के भारत का आत्मगौरव बढ़ाने तक इस खिलाड़ी ने हर मोर्चे पर अपना योगदान दिया है। विशेष एक शानदार खिलाड़ी के रूप में पिछले 5 से 6 साल में हमने सुचिका को देखा है।
3: बिल्कुल शक्ति, सुचिका का जो सफर रहा है वो बेहद शानदार रहा है। इन्होंने अपना डेब्यू 2017 में किया था। इसके बाद इन्होंने एमएमए से ब्रेक ले लिया क्योंकि इनको अपनी तैयारी के लिए समय चाहिए था। इस दौरान वे जूडो और जी जुत्सु में खेलती रहीं। 2024 में एक बार फिर उन्होंने एमएमए में वापसी करी और भारत के लिए पदक एशियन गेम्स में सुनिश्चित किया। इससे पहले वह एमएमए एशियन चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, साथ ही साथ जूजित्सु में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड अपने नाम कर चुकी हैं।
1: जी बिल्कुल, और हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में जूनियर जूडो की कोच के रूप में कार्यरत थी, और कहा जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेलनी होती थी तो अनपेड लीव लेकर के जाती थी, और ये तमाम मेडल्स और तमाम ट्रॉफियां इस खिलाड़ी ने भारत को दिए, और एक और पदक अब उनकी झोली में आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसके बाद अब बात क्रिकेट की। एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट में गत विजेता भारतीय टीम ने बांग्लादेश को सेमीफाइनल में 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
4: Will this be catching practice? And that shall bring an end to Bangladesh's innings. They bundle out for 81 and India find a place in the final. The hunt for gold will continue as they'll be up against Sri Lanka in their next encounter. India win by 114 runs.
1: तो ऐसे ही एक सन्नाटे के बीच जापान में भारतीय टीम ने एक बार फिर अपनी जीत की पताका लहराते हुए फाइनल में प्रवेश किया है, और महज एक कदम दूर अपना खिताब बचाने से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम महज 81 रन पर सिमट गई, और मुकाबले में स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मांधना ने आज एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। स्मृति मांधना ने बांग्लादेश के खिलाफ एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में 19 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 37 रनों की शानदार पारी खेलकर ये उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया। अब उनके नाम 171 पारियों में 4,788 रन है। इस मैच से पहले सूजी बेट्स से आगे निकलने के लिए उन्हें सिर्फ 8 रन चाहिए थे। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करते ही 7 गेंदों में ये उपलब्धि अपने नाम कर ली। मांधना और बेट्स पहले से ही पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बाबर आजम से आगे थी।

0: रांची में मांधना के बाद सूजी बेट्स 4758 दूसरे और पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं। सर फिरोजी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो अब मंगलवार को फैसला होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के बाद स्वर्ण पदक किसकी झोली में आता है। और ऐसा ही शानदार प्रदर्शन किया आज भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने भी, जिन्होंने जीत के साथ अपने अभियान का आरंभ किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया, जबकि पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से मात दी। महिला टीम की जीत में दीपिका ने 8 गोल किए, वहीं पुरुष टीम की ओर से दिलप्रीत सिंह ने 4 गोल दागे।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पुले के पहले मुकाबले में इंडोनेशिया को 13-1 से हराकर अपने खिताब बचाओ अभियान की मजबूत शुरुआत की। भारत ने पहले क्वार्टर में 2 गोल किए और दूसरे क्वार्टर में लगातार 5 गोल दागकर हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली। दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने भी गोल किए। इंडोनेशिया ने तीसरे क्वार्टर में 1 गोल किया, लेकिन भारत की ओर से दिलप्रीत ने जवाबी हमला करते हुए हैट्रिक पूरी की और बाद में अपना 4th गोल किया। शिलानंद लाखड़ा और सुखजीत सिंह ने 2-2 गोल किए। जुगराज सिंह ने भी गोल किया और भारत ने 13-1 से मुकाबला जीत लिया। वहीं भारतीय महिला टीम ने पूल बी के अपने पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। दीपिका ने ताबड़तोड़ 8 गोल किए, इशिका ने 3, जबकि ललथंग लुवांगी और नेहा ने 2-2 गोल किए। बलजीत कौर, नवनीत कौर, लालरेम सियामी और साक्षी राणा ने भी 1-1 गोल किया। भारत ने अपना दबदबा कायम रखते हुए हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा। दीपिका ने लगातार 4 गोल करके भारत की बढ़त 13-0 कर दी। अंत में अन्य खिलाड़ियों के गोल की मदद से भारत ने मुकाबला 19-0 से अपने नाम किया। इस मुकाबले के साथ गोलकीपर सविता पुनिया ने भी खास उपलब्धि हासिल की। ये उनका 320वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। इसके साथ ही वे वंदना कटारिया के साथ भारत की सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई। महिला टीम का अगला मुकाबला 21 सितंबर को इंडोनेशिया से होगा, जबकि पुरुष टीम 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
1: तो जारी है तमाम जीत का सिलसिला और पदक पक्के करने की दौड़। और अब बात बैडमिंटन और टेबल टेनिस की कर ली जाए, जहां भारतीय महिला टीम ने आज बैडमिंटन कोर्ट पर अपने शानदार प्रदर्शन से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं महिला टीम ने भी अपने ग्रुप एफ के दोनों मुकाबले जीत करके कल अपना तीसरे मुकाबले की ओर स्थिति को मजबूत कर लिया है। विशेष बैडमिंटन और टेबल टेनिस को लेकर क्या अपडेट है?
3: शक्ति, बैडमिंटन में आज भारतीय महिला टीम ने डोमिनेटिंग अंदाज में जीत दर्ज करी है। पीवी सिंधु ने पहले, उन्नति हुड्डा ने दूसरे और तन्वी शर्मा ने तीसरे गेम में लगातार 2-2 सेट जीतकर मुकाबले को अपने नाम किया है। अब भारतीय टीम का जो मुकाबला है 22 सितंबर को जापान से होगा। अगर टेबल टेनिस की बात करें तो भारतीय टीम ने पहले इंडोनेशिया से मुकाबला किया, जहां 3-0 की जीत दर्ज करी। सथिया ज्ञान शेखरन, मानव ठक्कर और मानुष शाह ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ महिला टीम ने भी इंडोनेशिया को 3-0 से हराया, जहां श्रीजा अकुला, दिया चिताले और यशस्वी ने इंडोनेशिया की टीम को कोई भी मौका नहीं दिया। हालांकि एक हार का सामना भी करना पड़ा है पुरुष टीम को ईरान से, जहां पर मानुष शाह, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई अपना अपना मुकाबला हार गए।
1: जी, तो ये तो था आज के खेलों का पूरा हाल। उसके एवज में भी कई और प्रतियोगिताएं भी हुई, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन दिए हैं। अब सबकी नजरें अगले दिन पर होंगी। कल के दिन भारत की नजरें किन खिलाड़ियों पर और किन खेलों पर टिकी होंगी?
3: कल के प्रमुख मुकाबलों की अगर बात करें शक्ति, तो शूटिंग में भारतीय खिलाड़ी कल सुबह प्रतिस्पर्धा करेंगे। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में हिमांशु ढिल्लों की अगुवाई वाली टीम पर भारत के समर्थकों की नजरें रहेंगी। वहीं स्कीट में मेंस और वुमेन्स इंडिविजुअल प्रतियोगिताएं होंगी। टेबल टेनिस में महिला टीम कल पाकिस्तान से मुकाबला करेगी। वहीं सुचिका तारियाल 60 किलोग्राम एमएमए में मुकाबला जीतकर कम से कम रजत पदक पक्का करने का प्रयास करेंगी। महिला हॉकी में भारतीय टीम का मुकाबला सुबह 9:30 इंडोनेशिया से होगा और भारत के जांबाज कबड्डी खिलाड़ी भी जापान से मिलते नजर आएंगे। इसके बाद सितारों से सजी बैडमिंटन पुरुष टीम, जिसमें लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, सात्विक चिराग, वो बांग्लादेश के सामने चुनौती पेश करेंगे। दोपहर में पुरुष टेबल टेनिस पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला करेगी और महिला टीम बांग्लादेश के सामने चुनौती पेश करेगी।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक बहुत व्यस्त शेड्यूल खिलाड़ियों के लिए भी और उनके साथ साथ तमाम दर्शकों के लिए भी। और आपने बैडमिंटन टीम का जिक्र किया, जिसने इसके पहले एशियाई खेलों में जो चीन में हुए थे होंगजो में, वहां पे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का फाइनल मुकाबला, जिसने भारत को पहली बार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जिताया था और लक्ष्य सेन का कांस्य पदक। तो कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी भी कल से अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए उत्सुक होंगे और उत्साहित होंगे।
3: बिल्कुल शक्ति, ये सभी खिलाड़ी कल भारत को एक पदक की नई उम्मीद देने के लिए तैयार हैं और अपने शानदार प्रदर्शन से कल कई पदक सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।
1: जी बिल्कुल, कई पदकों पर नजर होगी। हालांकि आज भारत के लिए एक छोटी सी दुर्भाग्यशाली खबर यह रही कि ट्रैकबॉल में जहां भारत को आज कांस्य पदक की उम्मीद थी, भारत उसमें नाकाम रहा और कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में वो दौर भारत हारता हुआ नजर आया।
3: जी बिल्कुल शक्ति, ट्रैकबॉल जो कि एक नया खेल है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, तो उसमें भारत को एक निराशा हाथ लगी है, लेकिन ये एक नया खेल है तो हमें उम्मीदें आगे जरूर रहेंगी।
1: जी बिल्कुल, एक नया खेल जहां भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रूपये का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
4: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
4: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पोस्ट स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं। इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी।

0: राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और विभिन्न प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।
3: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपये के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश

0: के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
1: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
2: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
1: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
3: सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया वहां मानती है और दुनिया के 800 जगह उन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
4: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम में बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह

0: बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम चाहत फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। इसे लिखा है देव कोहली ने। संगीत अनु मलिक का है।

0: आप देखिए कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है नाम, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

वफाए कितनी जताए कितनी।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर

0: कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाओ
0: एक उत्तम जीवन की कहानी।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

महेश भट्ट, फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। महेश भट्ट एक नामचीन निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म क्राफ्ट के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। महेश भट्ट ने कथा, पटकथा लिखी, संवाद लिखे और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई।

0: महेश भट्ट 1949 में मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही पले बढ़े। यहीं उन्होंने पढ़ाई की। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट का शुमार फिल्म जगत के नामचीन फिल्मकारों में होता है।
1: इस बात का एहसास हो गया था कि पिताजी का वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, तो एक जिम्मेदार बेटे होने के नाते मैंने काम काज करने की कोशिश की। कहीं पर एक जिद थी अपनी एक पहचान क्रिएट करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी मेरे लिए वो था कि पैसा कमाऊं किसी तरह। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना ब्राइट था नहीं, तो काम वहां मिला नहीं ज्यादा, तो क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था तो फिल्म लाइन में नौकरी मिल गई, और वहां पर बड़ी मेहनत से काम किया, शिद्दत से बहुत अपने आप को पेश किया हर डिपार्टमेंट में। वहां पर मेरे भाग्य ठीक थे, जानी बख्शी साहब ने मुझे एक दिन आके कहा, मैं दो चोर एक फिल्म थी उसके सेट पर क्लैप दे रहा था, तो उसने कहा कि ये सीन खत्म हो जाए तो बाहर आके जरा मिल लो मुझसे। तो मैं बाहर गया तो वहां एक व्यक्ति थे, श्री कुलदीप तलवार साहब उनका नाम था, उन्हें कहा ये फिल्म प्रोड्यूसर है, ये फिल्म बनाना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आई मेरा इससे क्या लेना देना। तो जॉनी साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिल्म डायरेक्ट कर लोगे? तो मैंने बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में फिल्म डायरेक्ट, और मुझे लकीली ब्रेक मिल गया। फिल्म नहीं बनी, उसका नाम था मुक्ति, उसके दो दिन की शूटिंग हुई थी, विनोद खन्ना साथ थे उसमें और श्री शत्रुघ्न सिन्हा साथ थे, मगर फिल्म दो दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई, धक्के खाए यहां वहां, और लकीली एक हमको एक बिल्डर मिल गए, मिस्टर आर एच जैन उनका नाम था, और उन्होंने जॉनी साहब को कुछ पैसे वैसे दिए फिल्म बनाने के लिए, मंजिलें और भी शुरू हुई, फ्लॉप हो गई, विश्वासघात बनाई फ्लॉप हो गई, नया दौर एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे वो भी फ्लॉप हो गई। लहू के दौरान मैं बहुत काम किया, वो फिल्म के गाने वाले अच्छे थे, बहुत बड़ी मेकिंग थी उसकी, विनोद खन्ना साहब की एक स्टारडम में एक डे बाय डे राइज आ रहा था, मगर वो फिल्म भी नहीं चली, और लगा कि भैया कि अब हमारा जो है रिटर्न बैक टू पवेलियन है, पैकअप है। उम्र थी मेरी 28-29-30 साल के आसपास ही, 8 years वेस्टेड। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजरा था, रजनीश एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ में, वो सारे अनुभव कहीं पर मैंने उसको निचोड़ कर एक फिल्म बनाई अर्थ।

एक नई शुरुआत हुई अर्थ से। अर्थ जब कामयाब हुई तो ये आदमी जिसकी ऑब्चुरी लिख दी गई थी उसका एक पूर्ण जन्म हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री।

अर्थ जैसी गंभीर फिल्म से बतौर फिल्मकार महेश भट्ट ने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के एक खास वर्ग से शाबाशी पाई और ये साबित किया कि महेश भट्ट कलात्मक सिनेमा की भी गहरी समझ रखते हैं। ये विश्वास और पुख्ता हुआ उनकी एक और मर्मस्पर्शी फिल्म से। ये थी सारांश।

एक शेर है कि फैज साहब का मेरे ख्याल में है कि एक कड़ा दर्द जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीखियों से उतरता ही नहीं, वो लगता है कि एक सैमुअल बेकेट साहब थे, वो कहते थे इवन बिफोर द इंक हैज ड्राइड ऑन द पेपर आई एम फिल्ड विद दिस फीलिंग ऑफ रिवल्शन, कि स्याही के सूखने से पहले एक फीलिंग आती है लेखक में कि जो मैं कहने निकला था कहीं मैं वो कह नहीं पाया हूं। तो वो तकलीफ, वो सारी जो एक जो एक इम्पल्स जो आपको मजबूर करता है एक लेख लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, वो आपसे वो काम तो करवा लेता है मगर वो जो सेंसेशन, वो इम्पल्स जो है जिसको लोगों ने अक्सर कहा कि एक कैथारसिस होती है, वो पूरी तरह कहीं पर फिल्म मेकर या राइटर शायद महसूस कर ही नहीं पाता। हाँ, ये लगता है कि कहीं पर आप अपनी केओस को, आप सारे कंफ्यूजन को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लें तो लगता है कहीं पर जिंदगी पर एक कंट्रोल सा आपको आ गया, वो एक इल्यूजन होता है। और एक तरकीब है जो मैंने 25 साल में बड़े मुश्किल से हासिल की है कि आप किसी भी तकलीफ वाले दौर से गुजरिए उसको आप अगर किस्से कहानी में बांध लें तो कहीं पर वो उसको आप झेल सकते हैं आसानी से। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड्स यू विथ सोलेस। शायद किस्से और कहानी कहने की ये परंपरा इसलिए चलती रहेगी और क्योंकि आदमी पीड़ा से बचने के लिए अपनी तकलीफों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है।

0: हमारी संवेदना को गहरे तक छूने वाली अर्थ सारांश और कास्ट जैसी फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने व्यावसायिक समझौतों के तहत वो फिल्में भी बनाई जो लोकप्रिय सिनेमा के लटके झटकों से भरी होती हैं।
1: देखिए, जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एक फिल्म मेकर या एक लेखक या एक आर्टिस्ट उन सारे सीजन से गुजरता है। कभी वो लगता है कि जैसे एक रेगिस्तान सा अंदर है जिसमें से कुछ निकलता ही नहीं, और इस रेगिस्तान से गुजरते वक्त फिल्म मेकर को बड़ी तकलीफ होती है, राइटर को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर अचानक वो फेस खत्म होता है और लगता है कि जैसे हरियाली फिर से वापस आ रही है। तो ये हालांकि ये फेज मेरी जिंदगी में ज्यादा लंबा नहीं था। 94 में मैंने लास्ट फिल्म बनाई थी सर और हमें राही प्यार के, जो कामयाब फिल्में थी, मगर ये जो पीछे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हूं और किसी फिल्म ने अपार्ट फ्रॉम तमन्ना जिसने एक नेशनल अवार्ड जीता था कुछ अपना असर छोड़ा नहीं, और इसलिए जब जख्म कहीं पर वापस उसने मेरे अंदर कहीं पर दबे कदमों आना शुरू किया जख्म की कहानी ने और मैंने उसको फिल्माया, तो कहीं लगा कि हाँ अपना कंट्रोल अब तक कायम है, कहीं पर वो फीलिंग्स वो इमोशंस जिसके लिए मैं इसके कारण मेरी एक पहचान बनी थी वो अब भी मेरे अंदर जिंदा है, और कहीं पर लोगों ने दोबारा दाद दी। मगर ये कहना कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सेसिव वर्क के साथ हुआ या एक इनडिफरेंट फेस था, एक इरेस्पॉन्सिबल फेस था, उसको सिंप्लीफाई करना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं उस कंफ्यूजन का एक हिस्सा रहा हूं। तो ये तो कोई बाहर वाला ही देख के बता सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ।

0: वो में से है, अपनी इसी फिल्म के बारे में बोलते हुए महेश भट्ट।
1: इसमें मेरी जिंदगी की गूंज है, जो झेला है, जो जिया है, कुछ जब बीती कुछ आप बीती का एक मिश्रण है। ऑफकोर्स ड्रामेटाइज्ड फॉर्मेट में, हिंदी सिनेमा के ईडियम में ये अनुभव मैंने पेश किए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा इस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का ही एक हिस्सा समझता रहा हूं, मानता रहा हूं। और ये मेरी जबान है, मैंने अपनी बात अपनी जबान में कही है। और ये फिल्म बनाते वक्त मुझे बड़ा सुकून मिला, कहीं लगा कि एक तार जो छूट गया था हाथ से, जैसे वो हाथ में आ गया। और इसको जब हमारे स्क्रीन के अवार्ड फंक्शन पे 5 अवार्ड मिले, तो लगा कि कहीं पर इस फिल्म का मेरी फिल्म इंडस्ट्री के भाई लोगों ने भी सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेकिंग ऑफ।

0: कहका।
1: महेश भट्ट ने कई फिल्मों की कथा लिखी तो कई फिल्मों की पटकथा। इनके नाम हैं सारांश, जन्म, काश, हक, तमन्ना, जख्म, संघर्ष, कसूर, ये जिंदगी का सफर, राज, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, इंतहा, पाप, रोग, कलयुग, हॉलिडे और गैंगस्टर।

महेश भट्ट द्वारा निर्देशित एक यादगार फिल्म है सर। फिल्म सर अपनी कथावस्तु और कलाकारों के अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए तो जाने जाते ही हैं, अपनी जीवन शैली, अपने दार्शनिक अंदाज और अपनी टिप्पणियों के लिए भी। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन अपनी बातें बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कह देना उनकी आदत है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर, हालात पर भी उनकी नजर रहती है। वक्त पड़ने पर वो खरा खरा कहने से पीछे नहीं हटते। महेश भट्ट प्रगतिशील सोच के फिल्मकार हैं, हालांकि ओशो और यूजी कृष्णमूर्ति के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। महेश भट्ट ने टेलीविजन के लिए एंकरिंग भी की और इस माध्यम के लिए फिल्में भी बनाई। टीवी के लिए बनाई गई उनकी ऐसी दो फिल्में हैं डैडी और फिर तेरी कहानी याद आई।

0: 2012 में महेश भट्ट की फिल्म आई राज 3। लेखन, निर्माण और निर्देशन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं।
2: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.3 MHz पर, ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10 बजने को ही हफ्ते कुछ ही पल में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: 20th of September, the Asian Games 2026.
4: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
5: नमस्कार, खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। एक तरफ जापान की धरती और आईजी नगोया का खेल मैदान है तो दूसरी तरफ हर खेल में पदक की उम्मीद में धक धक करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है। आईजी नगोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महामुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है।
6: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं। 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है।
5: तो अब आज की सुर्खियां। भारत में शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। एलावेनिल वलारिवन रिमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी। एलावेनिल सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा। सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची, खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला। हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज, अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत। और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता, अब जापान से अगला मुकाबला।
6: वक्त बदल रहा है और खेल भी। इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, टेक बॉल, वर्चुअल टाइकोंडो और BMX फ्रीस्टाइल। भले ही खेल नए हो लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है। जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत किसी से पीछे नहीं है। MMA में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा। आईजी नगोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA में भारत के लिए आज का दिन मिलाजुला रहा। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तान चिमेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में MMA में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
5: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले पक्का किया लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
7: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारिवन, सोनम मास्कर और विदर्सा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा। भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर

0: एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एला वलीन ने 633.5 तो विदर्शा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एला वलीन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा, तो वहीं एला वनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रही। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाता ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गईं। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं भारत की एला वनील वलारिवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
1: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।
2: एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम्स ने अपने अभियान की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप की। महिला टीम ने ग्रुप के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को तो पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया, बता रही हैं अमीषा।
3: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी, जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे, जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लालरन सियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा।
2: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 की करारी शिकस्त दी। पहले मैच में शिजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। शिजा ने यह मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेगुच डेनेजर को पांव जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की। उन्होंने भी निराश नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में शिजा अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में शिजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी 5वें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्वी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन उसके बाद यशस्विनी ने 11-8, 12-10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला 5वें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया।

0: भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफ़ान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीतकर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एकतरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीषा।
1: 20वें एशियन गेम्स आईची नगोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7, 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10 से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी डियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कंफर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
0: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेक बॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए, परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
2: डेब्यू हुए टेक बॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 यूना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेक बॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमराद बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9, 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहां जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहां मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला, और इस तरह से एशियन गेम्स में टेक बॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन खेलों के एक नए रूप टेक बॉल की पहचान जरूर बन गई।
0: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है, बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल 5वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में 6ठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रहे। वो ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ 2-2 हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमीषा की रिपोर्ट।
1: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट

0: जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
1: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही है कविता।
2: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगकुआन फाइनल से हुई, जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए, जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा धैया का मुकाबला ईरान की सोगंध सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसली से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
1: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपक केकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। सॉफ्ट टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी, इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सु महिला चेंगक्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारूका, भवतेज सिंह गिल और महराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में महेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रायजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट 2 में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्री स्टाइल के हीट 2 में आकाश मणि उतरेंगे। हीट 4 में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट 1 में दानिश सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के हीट 2 में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। MMA के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ 2-2 हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसरी का सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
0: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीत कर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है, जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जिन्होंने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड

0: का इंतजार है।
1: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की ये शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। अब जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अनुषा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे।

कुमार सानू और अलका यग क्षमा कीजिएगा, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में अभी आपने सुना आओ प्यार करे फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते ही कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज में दिल है बेताब फिल्म से। गीत के बोल समीर के हैं और धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: भारत खुश अपनी भी ऐसी है मेरी जान।
1: कार्यक्रम की अगली पेशकश में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में नागिन फिल्म का गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत परेलाल का।
0: उफ़, तुम्हारी आंखें, आज तुम्हारी आंखें प्यार के शरारे बरसा रही हैं और इनकी ताब लाने के लिए मुझे सहारा चाहिए, चाम का। अगर आपकी इजाजत हो तो
2: आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन जल्दी।

श्रोताओं, भी आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में नागिन फिल्म का गीत सुना। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं गुनाह फिल्म का गीत अमित कुमार साधना सरगम की आवाज में।

0: अभिज कुमार और साधना सरगम की आवाज में गाए गुना फिल्म के खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
4: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
2: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आईआईसीए ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह के 5:53 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, शुभ रात्रि, जय हिंद।